सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। इसमें स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 59 सेकंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटने केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, साथ ही साथ मननशील प्राणी भी। यूं तो संसार में बहुत से शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, परंतु प्रकृति ने अपनी रचनाओं में से सिर्फ मनुष्य को ही कई गुणों से विभूषित किया है, जैसे मानवता, क्षमा, दया, सहनशीलता, विवेक, धैर्य इत्यादि। प्रकृति प्रदत्त अनेक गुणों में धैर्य एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। संसार में रहते हुए जीवन में विपरीत परिस्थितियां अथवा आपत्तियां आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने ही आती हैं, परंतु जिनके पास धैर्य होता है वही चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का कारण धैर्य ही है। धैर्य जीवन की वह कुंजी है जो सफलता के ताले खोलकर मंजिल तक पहुंचाती है, या यूं कहें कि धैर्य मानव जीवन की यात्रा के रथ का सच्चा सारथी है। वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में आज का मानव है आधा अधूरा, परंतु उसे हर चीज पूर्ण चाहिए। किसी से भी आप मिले, वह तन से तो आधा आपके सामने होता है, परंतु मन बुद्धि से आधा कहीं और होता है। वह आधा खुश दिखता है, आधा बेचैन। वह आज का काम आधा करता है, आधा काम छोड़ता है कल पर। जिसे देखो वो अधीर हो बैठा अपने और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। व्यक्ति के जीवन में समय और परिस्थितियां तो हमेशा एक जैसी नहीं होती। जीवन में कभी अच्छा समय भी आता है तो कभी बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। अवांछित परिस्थितियों से गुजरते भिन्न भिन्न

0: मतों के व्यक्तियों, संवाद, संबंध और संपर्क में आने से प्रतिकूल स्वभाव, संस्कार, व्यवहार को देखकर अक्सर मन बेचैन हो जाता है। परंतु यदि व्यक्ति में धैर्य होता है तो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर इन परिस्थितियों को सहजता से अपने अनुकूल बना लेता है। व्यक्ति को जीवन कुछ इस तरह से जीना चाहिए कि जब वक्त अनुकूल हो तो आप कभी गुरूर न करें, मगर जब वक्त आपके विपरीत हो तो आप धैर्य न खोएं। धैर्य तो प्रकृति की दी हुई वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों से। यह धैर्य व्यक्ति की सहनशीलता की ऐसी अवस्था है जो मनुष्य को अधीर होने से बचाती है। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि बार बार असफल होने पर भी सफलता के लिए सदा प्रयासरत रहना है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। प्रकृति भी हमें कई माध्यम से धैर्य का पाठ पढ़ाती है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी संघर्षों और कठिनाइयों के बाद ही नए अवसर प्राप्त होते हैं। एक नन्ही सी चींटी भी 10 में से 9 बार असफल होने के बाद भी दाना लेकर अपने बिल तक पहुँच ही जाती है। युद्ध में परास्त होने के बाद एक गुफा में छिपे राजा को एक मकड़ी ने धैर्य का पाठ पढ़ाया। गुफा की दीवार पर नीचे से ऊपर चढ़ने के क्रम में कई बार फिसल कर गिर जाने के असफल प्रयास के बाद भी मकड़ी अंततः ऊपर चढ़ने में सफल हो ही जाती है। धैर्य व्यक्ति को जीवन में अनुशासित भी बनाता है। यह हमारे अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न कर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। धैर्य हमारे आत्मविश्वास को जगाता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। यह हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां होते हुए भी उसे महसूस होने नहीं देता, मन को शांति प्रदान करता है। धैर्य व्यक्ति को अनुभवी भी बनाता है, हमें आगे सोचने के लिए सदैव प्रेरित भी करता है। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति होती है वह व्यक्ति अभाव से प्रभाव तक का सफर आसानी से तय कर लेता है। कई बार व्यक्ति तुरंत लाभ के लिए जीवन के नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाने से परहेज नहीं करता, परंतु धैर्य ऐसे नकारात्मक विचारों का दमन कर व्यक्ति को सत्य की राह दिखाता है और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाता है। हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में भी धैर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। संत कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में धैर्य की व्याख्या बहुत ही सुंदर शब्दों में की है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अधीरता का निर्माता हम खुद हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि जैसे हमने अधीर होने की आदत डाली है वैसे हम धैर्य रखने की आदत भी तो डाल सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, धैर्य से कोई बैर नहीं, जीवन में इसके बिना किसी की खैर नहीं। जीवन यात्रा में भ्रमण करना है तो यह समझ लीजिए कि धैर्य के बिना कोई सैर नहीं। जागिए, जीवन में इस गुण को जागृत कर लीजिए, क्योंकि धैर्य के बिना जीवन में कोई भोर नहीं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए पपीता के रोग एवं रोकथाम विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता।
2: किसान भाइयों नमस्कार। पपीता का औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आजकल पपीता की बाजार में मांग बढ़ी है और पपीता का उत्पादन भी बढ़ा है। पपीता

0: आप लगाते हैं वहाँ पर ज़्यादा रोगजनकों की उपस्थिति होने के कारण उसमें रोग ज़्यादा लगते हैं। यदि आप गमले में पपीता की खेती कर रहे हैं तो वहाँ भी विशेष ध्यान देना होता है, या पॉलीबैग में यदि आप पपीता की खेती करते हैं तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यदि आप बड़े पैमाने पर बाग लगाते हैं तो उस समय मिट्टी से लेकर के वायुमंडल तक, आपको वातावरण तक शुद्ध रखना होता है, क्योंकि मिट्टी जनित कुछ रोग होते हैं जो कि पपीते के पौधे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो तना बिगलन रोग जो है पपीता में प्रमुख है। इसमें आप देखते हैं कि तने के निचले भाग की छाल जलीय हो जाती है और उस पर चकत्ते बनते हैं, तने के चारों ओर मेखला बनाते हैं, पौधे के ऊपर की पत्तियाँ मुरझा जाती है, पत्तियों का रंग पीला पड़कर सूखने लगता है और समय से पहले ही गिर जाता है। तने के आधार के ऊतक जो हैं वो विघटन होने के कारण सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं, और ख़ास करके वहाँ पर जहाँ पर कि जल जमाव होता है वहाँ पर यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पपीता का जो ये रोग होता है इसे पौधे को बचाने के लिए दवा का कुछ प्रयोग करना चाहिए। तनों पर आप कॉपर सल्फेट का गाढ़ा घोल जो है लगा दें। कॉपर सल्फेट के घोल लगाने से जो है काफ़ी लाभ होता है। कार्बेंडाजिम 25 ग्राम दवा जो है उसका भी 1 लीटर आप पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो उससे भी लाभ होता है। फल विगलन भी रोग पपीता में पाया जाता है। इसमें फलों पर छोटे गोल जलीय धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे बड़े होने के कारण ऊतकों का विघटन करने लगते हैं जिसके कारण फल सड़ जाता है, विगलित हो जाता है। तो इसके लिए, ये फफूंद जनित रोग है, इसके लिए मैंकोजेब दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा जो है आप 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें और उसी के अनुसार आप काम करें तो इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। एक और जो स्थिति पपीते में बनती है जिसे लोग कहते हैं कि इसमें फल नहीं बनता है, ये फूल पपीता हो गया, जिसमें कि ट्यूब में फूल जो हैं वो वे लटके हुए मिलते हैं और उसमें फल नहीं लगते हैं। उन लोग उसके लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो मादा फूल वाले पेड़ हैं उन्हीं को बाग में रखें, बाकी जो नर फूल वाले पेड़ होते हैं उनको बाग से हटा दें, क्योंकि ये नर फूल वाले जो वो पौधे होते हैं वो फल नहीं देते हैं, वो ऐसे ही खेत में पड़े रहते हैं। और जब आप पपीता के बाग लगावें तो उभयलिंगी कुछ किस्म होते हैं या मादा फूल देने वाले किस्म होते हैं उनका ही आप प्रयोग करें, उनकी ही बुआई करें, तो उसमें जो है फल अच्छे बनते हैं और रोग भी कम लगने की संभावना होती है। विशेष बात यह है कि जब भी आप कोई बाग लगावें तो ज़मीन की जांच कर लें कि ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन कौन से पैथोजन यानी कि रोगजनक पहले से उपलब्ध हैं, उनके लिए हम किस तरह के उपाय करें कि हमारे खेत में वे रोगजनक नहीं रहें, वहाँ से हटें। और बाहर से जो रोगजनक आते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, उनको भी खेत में आने से आप निषेधित करें यानी कि उनको आने से रोकें।
1: पपीता के रोग एवं रोकथाम विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब भी यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के

0: स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में आधिकारिक रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

हम सुख में मगन रहते हैं, लेकिन जब विपत्तियों से घिर जाते हैं तब ईश्वर को याद करते हैं और बार बार यही कहते हैं, प्रभु जी अब की बार उबार।

ईश्वर को व्रत और चढ़ावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है।

मनुष्य का यह जीवन कितना सुंदर, कितना उपयोगी और कितना अर्थपूर्ण है। हमें चाहिए अपने जीवन के एक एक क्षण को संपूर्णता के साथ जीने का प्रयत्न करें।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं रामचरित मानस पाठ, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का है।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ, मुख्य सर रविंद्र साठे का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर संजीव कुमार से। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर अनूप सिंह से भेंट वार्ता। विषय है बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। भेंट करते हैं अजिता चौबे।
1: श्रोता और स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप सिंह, जो कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे श्रोताओं के बीच।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। ये धड़कन तो हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट होता है उसको हम धड़कन कहते हैं। बढ़ी हुई धड़कन कौन सी स्थिति होती है?
2: एक्चुअली जो हमारा रेगुलर जो धड़कन की गति होती है 72 से 80 के बीच में एवरी मिनट ये धड़कता है, हमारा दिल जो धड़कता है उसी को धड़कन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हार्ट बीट बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जो कोई भी काम करते हैं, चलते हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो धड़कन बढ़ती है। धड़कन बढ़ने से होता क्या है, जब धड़कन हार्ट जब सिकुड़ता है, कॉन्टैक्ट करता है, तो जितनी आप एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उतनी बार वो हार्ट कॉन्टैक्ट करेगा, धड़केगा। तो जब आप कोई काम करते हैं तो उस समय आपको ब्लड सप्लाई शरीर में रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती है। यदि हार्ट बीट या धड़कन यदि नहीं बढ़े तो फिर आपको थकान सी महसूस होगी। तो एक नेचुरल प्रोसेस है
1: जी,
2: कि धड़कन, जब भी आप कोई काम करेंगी तो धड़कन बढ़ेगा, शरीर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस रेशियो में ब्लड सप्लाई जरूरी है। लेकिन रेस्टिंग के समय जब कोई आप काम नहीं करते हैं तो फिर धड़कन 72 से 80 के बीच में नॉर्मल होना चाहिए। और यदि रेस्टिंग में यदि आपका धड़कन 100 से ज़्यादा होता है तो ये एबनॉर्मल माना जाता है
1: जी।
2: जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए, उसी तरह हार्ट को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन हार्ट ऐसा ऑर्गेन है हमारे शरीर का जो कि 24 आवर्स धड़कते रहता है, सालों भर जब तक आप जीवित हैं धड़कते रहता है, बंद होगा तो हम भी बंद हो जाएंगे
1: जी, जी।
2: तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि उसकी धड़कन को एक मिनिमम रखें ताकि उसे भी रेस्ट आए। इसीलिए हमारा जो बॉडी होता है इस तरह से हैबिचुएटेड रहता है कि जब हम लोग रेस्ट करते हैं, शरीर की रिक्वायरमेंट ब्लड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ऑटोमेटिक धड़कन नेचुरल 72 और 80 के बीच में नॉर्मल ये सेट रहता है। लेकिन यदि आप रेस्टिंग में यदि 100 के ऊपर जाए तो समझिए कि अब नॉर्मल है
1: जी,
2: और 60 के नीचे जाए तब अब नॉर्मल है, और इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन 10, 5, 15 ऊपर नीचे हो सकता है। तो धड़कन बढ़ने का बहुत सा कारण है। यदि कोई कारण नहीं मिलता है तो उस धड़कन के रेट को, जो धड़कन की गति को कम करने के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत होती है। और जो हार्ट रेट जो बढ़ता है, धड़कन जो बढ़ती है, उसके बहुत सा कारण होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका रीज़न है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। जब कभी आप स्ट्रेस दीजिएगा धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। बट जो अननेचुरल है, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है हेल्थ पॉइंट व्यू से, स्ट्रेस जो रीज़न है, एंजाइटी, या फिर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी, यदि आप ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं, या कोई भी स्टिमुलेंट लाइक कोक, स्मोकिंग, ये सब हमारे हार्ट रेट को, जो बेस लाइन हार्ट रेट है जो रेस्टिंग में होना चाहिए, उसको बढ़ा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है
1: जी। डॉक्टर साहब, कब आप कहते हैं कि ये बढ़ी हुई धड़कन जो है अब इसको इलाज की ज़रूरत है?
2: यदि रेस्टिंग हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली 100 से ऊपर रहती है तो उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल है।
1: मतलब उस अवस्था में आपको

0: के पास जाना
1: जाना
0: चाहिए।
1: चाहिए, और उस धड़कन को कम करने के लिए दवा आपको लेना जरूरी होता है।
0: जी, कैसे उपचारित होती है ये समस्या?
1: ये क्या होता है कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है,
0: जी
1: जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वो हमारे शरीर में एक्साइटमेंट लाता है। तो ये जो भी कैफीन, स्ट्रेस, एंजाइटी जब होता है ना, वो थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। हमारे हार्ट के भीतर एक छोटा सा नर्वस सिस्टम होता है, तो उससे फायरिंग ज़्यादा होती है तो हार्ट बीट वो बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं जो सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करे, बैलेंस करे। डोज एडजस्ट करके हम लोग उसी रेशियो में दवा देते हैं ताकि उनका जो हार्ट रेट हो इस लेवल में बैलेंस हो सके।
0: जी श्रोता, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनूप सिंह से। विषय था बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। इस विषय पर अभी आप डॉक्टर अनूप सिंह से भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी अजीता चौबे। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

0: प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में जानेंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग के जरिए जोड़ों की सेहत को कैसे बनाए रख सकते हैं। साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे और प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम सूफी संगीत का प्रसारण होगा। प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत उस्ताद अब्दुल लतीफ खां का सारंगी वादन और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुनिएगा पपिया गांगुली की आवाज में कुछ गीत और भजन। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे से। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे उमेश कुमार सिंह और मनोरंजन ओझा। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे मगही कार्यक्रम मागधी। और रात 7:52 से सामयिक चर्चा के अंतर्गत सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर भाजपा विधायक संजीव चौरसिया से विशेष चर्चा। रात 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओ, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरन्तर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमन्त्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिक 2000 वर्षे 1 बिलियन

0: अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे पञ्चशततोप्यधिकाः पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीयसैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्यपरम्परा अस्ति, अपितु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतनयात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा एचडी कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकासपर्यावरणव्यवस्थायाः वर्धमानशक्तेः प्रमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसन्धान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसन्धान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति, तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृङ्खलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तानदलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर

0: में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिसो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और जोड़ों के दर्द में किस तरह से योग से राहत मिल सकता है और साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। सबसे पहले जानिए इतिहास में आज के दिन का महत्व। आज 13 जून है। 13 जून का इतिहास भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और बलिदानों के लिए जाना जाता है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। 1290 में आज ही के दिन जलालुद्दीन फिरोजा शाह खिसली दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासन का अंत और खिजली वंश की शुरुआत हुई। 1940 में जालियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रे माइकल ओडायर की हत्या करने करके बदला लेने वाले महान भारतीय क्रांतिकारी उद्यम सिंह को

लंदन में फांसी दे दी गई थी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने युद्ध सूचना कार्यालय यानी OWI की स्थापना की। 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में एक फिल्म जिसका नाम बॉर्डर है, इसके स्क्रीनिंग के दौरान भीषण आग लग गई जिसमें 59 लोगों की दुखद मौत हो गई। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म दिवस है, ये त्वचा के रंगत की अनुवांशिक स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने और पीड़ितों के अधिकारों के समर्थन के लिए मनाया जाता है। श्रोता, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे योग के जरिए जोड़ों की सेहत कैसे बनाए रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गाना। फिल्म का नाम था नया दौर, बोल थे सायर लुधियानवी के और संगीत ओपी नैयर का। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हालचाल। कार्यक्रम में अब बात जोड़ों के दर्द में किस तरह से योग राहत पहुंचाता है। जोड़ों के दर्द में योग बेहद फ़ायदेमंद होता है। ये जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और चिकनाई बढ़ाकर जकड़न को कम करता है। नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है और सूजन और दर्द में आराम मिलता है। स्ट्रेचिंग और प्राणायाम से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दर्द और जकड़न कम होती है और तनाव भी कम होता है। पुराने दर्द से होने वाली मानसिक थकान और तनाव को कम करने में योग बेहद सहायक होता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है श्रोताओं, कि जब भी आप इस तरह के आसन करें तो अपने विशेषज्ञ से ज़रूर सीखें। उनसे सीख कर ही अभ्यास की शुरुआत करें। तीव्र दर्द के दौरान भारी या कठिन आसन ना करें, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। विशेषज्ञ के अनुसार जोड़ों पर बिना दबाव डाले किए जाने वाले आसन हैं, जैसे ताड़ासन, सेतु बंधासन। ये आसन ज़्यादा सुरक्षित होते हैं।
1: कभी किसी की खुशियाँ कोई लूटे ना, कभी किसी

जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में, बोल थे प्रदीप के और संगीत दत्ता राम का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं आबिदा परवीन की आवाज़ में कुछ सूफी संगीत।

शो तो अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खां का सारंगी वादन राग ललित। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यही समाप्त होता है।

AIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
0: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटने केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी

0: और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित

0: रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित विजयन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज

0: सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the global south on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing

0: to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. According to IMD, conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh during the next 2 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shakun Chopra.
1: Thank you, Sarabjeet. Almost all newspapers today open with condemnation of US attack on ship with Indian crew. The Asian Age writes, India flays Hormuz ship attacks, US blames Iran. Hailing diversification of its energy basket, EAM calls out West's double standards on oil purchases, writes the Statesman. In the backdrop of US and Iran signing peace deal, war premium to peace dividend, stock surge, crude cools, and the rupee rebounds on hopes of easing tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman on its editorial page under the caption Demanding Proof writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it open to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकत दारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकत दारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहाँ वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस 2 तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरिया

0: करेंगे। वज़ीर-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का सातवां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खुसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज़ बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खुसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक मसनूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खुसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्लेग्रिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ ताबुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रातिस्लावा से CM पल्लुरसी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मरतबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमशान तकरीब में 500 से ज़्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज़ की अलामत भी होती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाज़ों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिससे ज़्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिज़ाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निज़ाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल तक बैलिस्टिक मिज़ाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिज़ाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ये निज़ाम मिज़ाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटाबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज के हमले में 24 भारतीय शामिल थे, जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर 3 मल्ला पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक हो गई। इस वाक़े के बाद भारत ने वाशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉज डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाज रानी के खिलाफ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले

0: बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की सेफ्टी, सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाज़ों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खत्े में अमन इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमन सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तशवीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त, चौकसी बढ़ाने, हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिजाइल निज़ाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी को निज़ाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिजाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर DRDO DRDL में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि DRDO की जानिब से तैयार करदा निज़ाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निज़ाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई ताउन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज़ में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के तकरारात से मुतालिक तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतही जायजा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग के दौरान जनाब वैष्णव ने ज्यादा शफाफ, दुरुस्त और टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महकमा जाती इम्तहान की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड की जानी मुंतकली की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और कहा कि तकरारात के अमल को तेज़ रफ्तार, मौसर और उम्मीदवारों के लिए आसान बनाने के लिए और ज्यादा टैबलेट पर मबनी इम्तिहानात मुतारिफ कराए जाने चाहिए। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिल जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तहकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफर काफी तेज रफ्तार रहा और यह सफर भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिल-ए-दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर का क्याम मोदी हुकूमत के काबिल जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तख्लीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल जिक्र है। ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरद चंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफ़ा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी

0: रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से अमेरिका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरका मेजबान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। कनाडा की जानिब से सैल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलमी कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाम इनकलाब ने बहरे ओमान में एक तजारती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजानों की मौत पर रात खारजा की जानी से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिमलमूरू को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रात खारजा ने उन्हें अपनाए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इनकलाब ने कांग्रेस की लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरख्वास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज़्यादा मनफी असर तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिज़ाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाज़ों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाज़ी हलाक हुए हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवज़ा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
1: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
1: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाई जाए। श्री चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। यह टीम मुख्यालय की आईटी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी। राजस्व कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलावार समीक्षा के दौरान श्री जायसवाल ने यह निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और भूमि संबंधी अनियमितताओं के आरोप में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पिछले एक महीने में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत अन्य खाद्य पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। FSSAI के अनुसार जन स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य उत्पाद व्यापारियों को पैकेट में पिन और तार का उपयोग बंद करना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर सोमनाथन ने सभी संबंधित हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से परीक्षा का सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहे हैं। वहीं NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट

0: कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना की जांच की प्रगति पर अंतरिम बयान जारी किया है। पिछले साल अहमदाबाद में हुई इस दुखद दुर्घटना को 1 साल पूरा हो गया है। AAIB ने कहा है कि सभी जांच गतिविधियां पूरी होने और आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर तरीके से की जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा लोक भवन और उच्च न्यायालय परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बढ़ती उम्र के लिए योग निर्धारित की गई है। इस थीम के माध्यम से लोगों को बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने को प्रेरित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनरेगा के तहत 990 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश में संचालित हो रही मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामग्री मद में 73,556 लाख रुपए और प्रशासनिक मद में 1,203 लाख रुपए आवंटित किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में मानसून के प्रभाव से अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जमुई जिले के कुछ भागों में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है।
4: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति

0: 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर, मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में

0: को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश में 21 नए पालना घर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत नए पालना घर की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। प्रदेश में पहले से 79 पालना घर संचालित हो रहे हैं। पटना जिले के मसौली थाना क्षेत्र के मणिचक गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में मसौली के थानाध्यक्ष राहुल कुमार और दारोगा संजय कुमार घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के सभी 76,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों की जमीन का डाटा बैंक बनाया जाएगा, साथ ही विद्यालय भवनों और अन्य संरचनाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाटा बैंक बनाने की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पूर्व अधिकारियों को सौंपी जाएगी। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। भारत का पहला मुकाबला कल चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में भ्रष्टाचार कर कोई नहीं बच सकता। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट में छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 15 मिनट। दैनिक भास्कर ने खाड़ी युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर लिखा है, ईरान के साथ युद्ध खत्म, करार जल्द होगा। प्रभात खबर ने मौसम की गतिविधियों को तरजीह देते हुए लिखा है, सूबे में मानसून ने पकड़ी रफ्तार 17 जिलों में पहुंचा। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का निधन। आज अखबार लिखता है, बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण

पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: KIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सामिन कराम को आज की सेहतमंद सुबह का आदाब पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की जानिब से। जी हाँ सामिन, शगुफ्ता आज फिर एक बार आपके रूबरू है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन लेकर। आइए आज की अंजुमन का आगाज़ करते हैं एक प्यारी सी गज़ल के साथ।

गजल के बाद दोबारा हम सब आपका उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में इस्तकबाल करते हैं। एक शायर ने क्या खूब कहा है सामीन, के चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आज हमारी गुफ्तगू मशहूर शायर, जिन्हें उर्दू अदब के मायह नाज गज़ल गो शायर और तहरीक आज़ादी के सरगर्म रहनुमा में जाना जाता है, उनकी शायरी में हुस्न व इश्क की लतीफ़ जज्बात और कैद व बंद की सऊबतों का अक्स एक वक्त नज़र आता है, जिनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। जी हाँ सामीन, आपको बताएं कि मौलाना हसरत मोहानी उर्दू अदब के पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने रवायती

गज़ल के हुस्न व इश्क को सियासत, इनकलाब और आज़ादी के नज़रियात से जोड़ा। उन्होंने ही जंग आज़ादी के वक्त मशहूर नारा दिया, वो था इनकलाब जिंदाबाद। जब उन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने जेल की चक्की पिसवाई, तब उन्होंने एक शेर लिखा था। कहते हैं, है मश्क ए सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जी हाँ सामीन, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है एक और प्यारी सी गज़ल समाप्त करने का, आइए समाप्त करते हैं।

सामीन हसरत मोहानी एक ऐसे आज़ाद ख्याल इंसान थे जिन्हें न तो जेल का डर था और न ही ऐशो आराम का लालच। वो कहते हैं, दरवेशियो इनकलाब है मसलक मेरा, दरवेशियो इनकलाब है मसलक मेरा, हसरत में अमीरे वक्त से डरता नहीं। हजरत मोहानी की शायरी और उनकी गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हुआ जाता है सामिन हजरात अंजुमन में आज की खास पेशकश उर्दू फीचर खुदा बख्श लाइब्रेरी खतूतात कलमी नुस्खे और नायाब किताबों का खजाना समात करने का। तहरीर नुमान हाशमी की और पेशकश कमाल जाफरी की है। आइए समात करते हैं ये उर्दू फीचर।

0: खुदा बख्श लाइब्रेरी या जैसा कि इसके बानी है नहायत आजजी के साथ पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम दिया था। ये दुनिया में इस्लामी अदब का एक बेहतरीन खजाना है।
1: ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए पटना में कायम किया गया है।
2: पटना वो शहर है जो 2600 वर्षों से जमाने के तमाशे देखता आया है।
3: पटना रहम दिल बादशाह अशोक का शहर रहा।
0: पटना उसके बाहिम्मत दादा चंद्रगुप्त मौर्य का शहर रहा।
1: पटना मशहूर सैयाह मेगास्थनीस का शहर रहा है, जिसने यहाँ अपनी जिंदगी के 835 साल बसर किए।
2: और ईसा की पैदाइश से 300 साल कबल एक हिंदुस्तानी शहर की जिंदगी की जीती जागती तस्वीर बनाकर अहले यूरोप के लिए छोड़ा गया।
3: जी हाँ, इसी शहर के गलियों में लोगों ने महात्मा बुद्ध को नजात दिलाने वाली दुनिया की तलाश में घूमते देखा।
0: इस तरह इस लाइब्रेरी को सामाजिक, सियासी और रूहानी बहुत ही अच्छा माहौल मिला।
1: खुद लाइब्रेरी भी अपने आप में कुछ कम अहम नहीं है।
2: इसमें गुजरे हुए आलिमों और गुजरे हुए बादशाहों की यादें महफूज हैं।
3: जो लोग कदीम जमाने के कदरों से वाकिफ होना चाहते हैं, ये लाइब्रेरी उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए मौजूद है।
0: नायाब किताबों की इस लाइब्रेरी की तारीख भी कम दिलचस्प नहीं है।
1: बिहार के शुमाल में एक शरीफ मुसलमान मोहम्मद बख्श रहते थे।
2: मोहम्मद बख्श आलिम थे, शायर थे और अपनी फुर्सत के औकात में मशरिकी अदब की किताबें जमा करते थे।
3: इंतकाल के वक्त वो अपने बेटे और लाइब्रेरी के बानी खुदा बख्श के लिए 1400 किताबें छोड़ गए।
0: ज़ईफ़ुल उम्र मोहम्मद बख्श ने इंतकाल के वक्त जो आखिरी ख्वाहिश जाहिर की वो
1: ये थी। इधर बल्कि अगर हो सके तो पटना शहर ही

0: बड़ी लाइब्रेरी का मतलब बन।
1: और ये कुतुब खाना मशरकी मालूमात और नशरियात का जरिया बने जवां हिम्मत बेटे ने, जिसे विरासत में इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं मिला था, अपने शफीक बाप की तमन्ना पूरी कर दिखाई।
2: रोजी रोटी की तलाश में पहले वकील और फिर निजाम हैदराबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने।
0: हैदराबाद के कयाम के दौरान जब वह हाई कोर्ट से वापस आ रहे थे तो उनकी मुतलाशी नजर एक आटे के बोरे पर पड़ी जिसमें किताबें भरी हुई थी।
1: उन्होंने गाड़ी रोकी और खिचड़ी फरोश की दुकान पर जाकर किताबें देखने के बाद पूरे बोरे की कीमत पूछी।
3: खिचड़ी फरोश ने दानिशमंदी से जवाब दिया, मैं किसी और को ये बोसीदा और सड़े हुए कागजात सिर्फ 3 रुपए में देता, लेकिन चूंकि हुजूर को इसमें दिलचस्पी है इसलिए आपसे 20 रुपए लूंगा।
2: और खुदा बख्श साहब ने उसे 20 रुपए में खरीद लिया।
0: खुदा बख्श साहब का अंदाजा सही निकला। उस रद्दी बंडल में अरबी किताबियात पर एक अवीन नुस्खा मिला जो कहीं और नहीं था।
1: जी हाँ, निजाम हैदराबाद ने इस नुस्खा के लिए खुदा बख्श साहब को 400 रुपए की पेशकश की।
3: लेकिन बेसूद भला खुदा बख्श साहब उसे क्यों बेचते?
2: वो तो खुद ऐसी नायाब चीजों के दीवाने थे।
0: इस दौरान वो सैकड़ों लोगों से मिले और पूरे हिंदुस्तान में खूब घूमे।
1: दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों से वो बखूबी वाकिफ थे।
3: नायाब किताबों के जमा करने वाले की हैसियत से उनकी शोहरत नायाब और बेशकीमत किताबों के मालिकों तक पहुंच चुकी थी।
2: हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर के ममालिक उनकी पहुंच के हदों से बाहर थे।
0: लेकिन जहां चाह वहां राह वाली बात सही साबित हुई।
1: अपने दिल की आरजू पूरी करने के लिए उन्होंने एक अरबी शख्स को बहाल किया
3: जिसका नाम मोहम्मद मक्की था।
2: वो 18 बरसों तक काहिरा, दमिश्क, बैरूत, मिस्र और ईरान के कुतुबखाने खंगालता रहा
0: और हर बार अपने आका के लिए जो कलमी किताबें उसे दस्तियाब हुई वो उनके साथ शादा व फरहा आता रहा।
1: हिम्मत मर्दा मदद खुदा।
3: जी हाँ, अगर इंसान हिम्मत से काम ले तो खुदा भी उसकी मदद करता है।
2: अब देखिए ना, खुदा बख्श साहिब की मदद के लिए खुदा ने एक बाहिम्मत अरबी को भेज दिया।
0: सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास फरिश्ते भी आते थे।
1: ख्वाब में उनका दीदार होता और उनके सामने हाथ बटाते।
3: एक बार तो खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद लाइब्रेरी में जीनत अफरोज हुए।
2: मशहूर मुअर्रिख यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि खुदा बख्श ने उनसे कहा कि
0: एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि लाइब्रेरी से लगी थी जमीन में लोग खचाखच भरे हुए। मैं भी घर से निकल पड़ा था। लोग चिल्लाने लगे,
1: रसूल अकरम तुम्हारी लाइब्रेरी में तशरीफ ला रहे हैं, तुम कहाँ हो?
3: खुदा बख्श साहब ने बताया। मैं उस कमरे की तरफ दौड़ा जहाँ हाथ से तहरीर की हुई किताबें रखी थी।
2: उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके थे।
0: लेकिन यहाँ हदीस की दो कलमी किताबें मेज पर खुली रखी। लोगों ने बताया कि उन दोनों को रसूल अकरम पढ़ रहे थे।
1: इन दोनों किताबों पर लाइब्रेरी के बाणी ने एक नोट लिख दिया
3: कि किसी भी हालत में इन किताबों को कुतुबखाना से बाहर न ले जाया जाए।
2: ये कुतुबखाना कदीम आलम इस्लाम का नायाब खजाना है।
0: दुनिया में निहायत खूबसूरत, खुशखती, सोने की मीनाकारी, बेशकीमती किताबी नक्काशी और
1: सुर्ख गुलाबी, जाफरानी, नीले और हरे रंगों से कुछ सफात पर मुसव्वरी से बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती।
3: उनकी सादगी और खूबसूरती से बढ़कर दिल पर असर करने वाली कोई चीज न देखी गई और न ही सुनी गई।
2: जिन इनकलाबात में इन चीजों ने अपना किरदार निभाया है उनसे कहीं ज्यादा ये खुद असली मालूम होती हैं।
0: ये दमिश्क के किसी गरीब आलिम की लिखी हुई किताब है जिसकी दुनिया भर में एक ही जिल्द है।
1: ये देखिए, ये किताब किसी शहंशाह या

0: बादशाह को तोहफे में पेश की गई है।
1: और ये किताब हीरो से मुजयन किसी शहजादी का पसंदीदा खिलौना ही रही है, जो खुद भी एक आला दर्जा की शायरा थी।
2: यहाँ तारीख खानदान तैमूरिया यानी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे उस खानदान की तारीख की एक नायाब और नफीस जिल्द है।
3: मुसव्विरी के नुक्ते नजर से ही ये किताब बेशकीमती है। इसके कम से कम 133 सफाहात पर तस्वीरें बनी हैं।
0: हर सफा के नीचे उस मुसव्विर का नाम लिखा है।
1: इनमें सबसे मशहूर मुसव्विर ईरान के शहर शिराज का रहने वाला ख्वाजा अब्दुस समद था।
2: उसने हुमायूं को खुशखती और मुसव्वरी सिखाई थी।
3: इस किताब पर शाहजहां के हाथ की लिखी हुई एक इबारत भी दर्ज है।
0: इसमें शाहजहां ने बताया है कि तैमूर और उसके जानशीनों की ये तारीख जो अकबर के जमाना के 19वीं साल पर खत्म होती है शाह बाबा के दौर में लिखी गई।
1: शाह बाबा से मुराद खुद शाहजहां अकबर हैं।
2: अख्तियार की मुहरें और अर्ज़दीद शुद की इबारतें इस किताब के काबिल एतमाद होने की तायीद करती हैं।
3: एक जगह फारसी में लिखा है कि इस किताब की कीमत 8000 रुपए है
0: और आज हजारों पौंड में भी उसका खरीदना मुमकिन नहीं।
1: ये किताब कितनी अहमियत रखती है इसका अंदाजा इस बात से होता है कि जिस अलमारी में इसे रखा गया है उसे दो कुंजियों से खोला जा सकता है।
2: इन दो कुंजियों में से एक लाइब्रेरी के डायरेक्टर के पास और दूसरी पटना के कमिश्नर के पास रहती है।
3: इस कीमती खजाना के बाद फन का एक और नमूना देखिए।
0: ये शाहजहां के जमाने की तारीख बादशाह नामा है।
1: इसके अंदर मुसव्विरों ने अपनी अंथक मेहनत से जो तस्वीरें बनाई हैं, उन पर एक नजर डालने ही से आप ये महसूस कर लेंगे कि मुगलों की नस्ल में कितनी तब्दीली पैदा हो चुकी थी।
2: ये नस्ल माहौल की तब्दीली और हिंदुओं में शादी ब्याह की वजह से हिंदुस्तानी बन चुकी थी।
3: इन खालिस हिंदुस्तानी नजारों के बाद अब हुसैनी के शाहनशाह नामे की सर करें। ये किताब हमें तुर्की के उस्मान अली सुल्तान के साथ मैदान जंग में पहुंचा देती है।
0: ये किताब जो सुल्तान मोहम्मद सोम के नाम मौसूम की गई है 16वीं सदी के आखिर में कुस्तुनतुनिया में इसी सुल्तान के लिए लिखी गई है।
1: ये किताब उस सुल्तान के शाही कुतुबखाना में रखी रही।
2: फिर नहीं मालूम किस तरह वो शाहजहां के जमाना में हिंदुस्तान पहुंच गई।
3: यहाँ फिर वो शाही खजाना में दाखिल हो गई।
0: इस पर शाहजादों की तहरीरें और मोहरें भी हैं।
1: इनमें से एक तहरीर अपने बाप की दीवानी और ताजमहल के मकबरे में आराम करने वाली बेगम की बेटी जहां आरा बेगम की है।
2: जहां तक मालूम हो सका है दुनिया में शहंशाह नामा की कोई और नकल दस्तयाब नहीं है।
3: इसीलिए लाइब्रेरी के बेशकीमती जवाहर में इसका शुमार होता है।
0: इसके बाद अब थोड़ा फिरदौसी के शाहनामा का एक निहायत अहम नुस्खा पेश करने की इजाजत हो।
1: पारसी की शानदार नज़्म दुनिया की बड़ी बड़ी जंगी दास्तानों में शुमार होती है।
2: 35 साल की मेहनत के बाद शायर की उम्र के 80वीं साल में ये दास्तान मुकम्मल हुई।
3: ये कहानी दिलचस्पी से भरी है। सुल्तान महमूद गजनवी ने ये शाहनामा लिखने का हुक्म दिया था।
0: कहते हैं कि सुल्तान ने जितना इनाम देने का वायदा किया था उतना इनाम नहीं दिया।
1: फिर एक तवील मुद्दत के बाद वो अपने किए पर पछताया और शायर को इनाम भेजा।
2: लेकिन इधर सुल्तान के पैगाम्बर शायर के शहर तूस में इनाम से लदे ऊँटों को लिए दाखिल हुए।
3: उधर शहर के दूसरे दरवाजे से शायर का जनाजा कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ।

0: पुरानी कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती।
1: इस लाइब्रेरी में शाहनामा की ये कापी 10,000 इशार के बाद भी अधूरी है और 1539 से ज्यादा पुरानी नहीं है।
2: 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के मौका पर ये तारीखी किताब शाह जॉर्ज पंजुम के सामने पेश की गई थी।
3: आने वाले जमाने के लिए जॉर्ज पंजुम के दस्तखत इस वाकया की शहादत दे रहे हैं।
1: यहाँ शाहनामा की एक और नकल भी है। ये नकल मस्कुरा नकल से ज्यादा पुरानी और इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। शाहनामा के बाद एक ऐसे मुसन्निफ की किताब देखिए जो फिरदौसी के बहुत बाद गुजरे हैं।
2: ये मशहूर सूफी दरवेश और शायर मौलाना अब्दुल रहमान जामी हैं।
1: ये लीजिए, ये मसनवी यूसुफ जुलैखा की एक नकल है।
2: यूसुफ जुलैखा की दास्तान हजरत यूसुफ और हाकिम मिस्र की बीवी के दरमियान इश्क की दास्तान है।
3: मशहूर मुसन्निफ मीर अली हरबी ने यह किताब 1523 में लिखी थी
1: और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे शहंशाह जहांगीर को तोहफतन पेश किया। अब जरा इस छोटी सी मगर नायाब किताब को उठाते हैं। ये दीवान हाफिज की एक नकल है।
2: कई नाजुक मौकों पर जब खुद उनकी और उनसे वाबस्ता लोगों की जान की बाजी लगी हुई थी, हुमायूं और जहांगीर ने उससे इसी तरह फाल निकाला है
3: जैसे होमर और वर्जन से यूरोप में फाल लिया जाता था, या जैसे आज भी गरीब लोग मुकद्दस इंजील से फाल निकालते हैं।
1: अब जरा ये देखिए, ये सादी के गजलों के दीवान की कई नकलें हैं। सादी 13वीं सदी के मशहूर शायर थे। कहते हैं वो शाही दरबारों से वाबस्ता जरूर थे,
2: लेकिन इसके बावजूद उनकी कलंदरों जैसी जिंदगी का ये हाल था कि 14 हज तो पैदल किए थे।
3: एक और शाहकार लीजिए, इसमें उमर खयाम और हाफिज दोनों की तख्लीकात एक जा कर दी गई है।
1: उमर खयाम की तख्लीकात खास तहरीर में दर्ज है और हाशिया हाफिज की तख्लीकात बिल्कुल बारीक रूप में दर्ज है। ईरान के इन शायरों के साथ साथ बहुत से हिंदुस्तानी शायरों की किताबें भी यहाँ मौजूद हैं।
2: इन्हीं में अमीन खुसरो हैं, जिनकी शायरी आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में धड़कन पैदा कर देती हैं।
3: मीर, अनीस, गालिब, इकबाल वगैरह जैसे अजीम शायरों की सैकड़ों किताबें यहाँ मौजूद हैं।
1: यहाँ मुताला करने के लिए दुनिया भर से अहले इल्म आते रहते हैं। जी हाँ, अभी मार्च 2004 में भी फ्रांस के दानिश्वर एलिन मोले कई हफ्तों तक इस किताब का मुताला करते रहे।
2: यहाँ करोड़ों मुसलमानों की रहनुमा मुकद्दस किताब कुरान के लिए कई नुस्खे हैं जो खुद अल्लाह की किताब है
3: और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का अजीम ज़खीरा है।
1: उनसे मुताल्लिक बाकिरदार आलिमों की तहरीर करदा तफसीरें हैं।
0: इस कुतुबखाना में कुरान मजीद के 2-1 नुस्खे ऐसे भी हैं जो कुछ लोगों की नज़र में लाइब्रेरी की नायाब सरमाया है।
2: मशहूर खुश नवीस याकूत मुस्तासमी के जरिए लिखा एक नुस्खा है। इसके आखिर में उसके दस्तखत और 1254 ईस्वी की तारीख दर्ज है।
3: हर बाब का उन्वान सुनहरे हरफों में लिखा गया है।
1: कुरान मजीद का एक और नुस्खा अपनी गैर मामूली सजावट के लिए नुक्ता नजर से इस नुस्खा से भी आगे है।
0: कुरान मजीद का ये नुस्खा जो बहुत ज्यादा मुजयन है, एक बहुत बड़े कागज के टुकड़े पर लिखा गया है।
2: इसके बसे हाशिया पर फारसी में एक तासुर लिखा गया है।
3: किताबों की हद तक इससे ज्यादा मुजयन किताब का तसव्वुर भी मुश्किल है।
1: इसका कागज चमकदार और रेशम की तरह हल्का है।
0: इसके बावजूद इस शाहाना नुस्खा का वजन, जिस पर खाली सोना मढ़ा गया है, 10 सेर से कम ना होगा।
2: इन नुस्खों के साथ ही एक बहुत छोटे साइज का नुस्खा रखा हुआ है।
3: ये किताब एक चर्मी जिल्द के अंदर बंधी हुई है। वैसे जिल्द बंदी तकरीबन खत्म हो चुकी है।
1: अरबी हरूफ के ऊपर नुक्तों के न होने से यह अंदाजा लगाया गया है कि यह किताब 3री सदी की लिखी हुई है।
0: और ये

0: लाइब्रेरी में सबसे पुरानी किताब है।
1: इस लाइब्रेरी में एक और सबसे पुराना और अहम कुरान मजीद का एक सफा है।
2: छठी सदी में ये हरण के चमड़े पर कॉफी खत में लिखा गया था।
3: इसे शीशे में रखा गया है।
0: इस लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा मखतूतात हैं।
1: इनमें अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, तुर्की और पश्तो जबानें शामिल हैं।
2: और किताबें, किताबों का यहाँ खजाना है।
3: जी हाँ, यहाँ लगभग 2,20,000 किताबें हैं।
0: शायद ही दुनिया की कोई ऐसी जुबान हो जिसकी कोई किताब यहाँ नहीं है।
1: किताबों के इस खजाना में हर साल 6,000 नई किताबें शामिल हो जाती हैं।
2: और मुजल्लिद रिसाले भी 40,000 से कम नहीं है।
3: इस लाइब्रेरी को सबसे पहले खुदा बख्श खां के वालिद मोहम्मद बख्श खां ने मोहम्मदिया लाइब्रेरी के नाम से छपरा में कायम किया था।
0: 1600 मखतूतात जमा किए थे। मोहम्मद बख्श खां छपरा में वकालत करते थे।
1: फिर छपरा तर्क करके पटना आकर चौहत्ता में ही रहने लगे।
2: उनकी जिंदगी में भी एक अहम वाकया पेश आया।
3: किताबों की चोरी और बदनीयती हर दौर में रही है।
0: जी हाँ, और किताबों की चोरी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी करते हैं।
1: ये क्या बात हुई? अरे भाई, किताबों की चोरी पढ़े लिखे लोग नहीं करेंगे तो क्या जाहिल करेंगे?
2: मोहम्मद बख्श की जिंदगी का एक और अहम वाकया पेश है।
3: खुदा बख्श के खानदान में दूसरे के जज्बात का किस कदर एहतराम था, इसकी एक अहम मिसाल हमारे सामने है।
0: खुदा बख्श साहब के साजिशदी सलाउद्दीन खुदा बख्श ने इस वाकया को तहरीर किया है कि
1: उनके दादा मोहम्मद बख्श ने बचपन में एक ब्राह्मण खातून का दूध पिया था और उनकी बहुत इज्जत व एहतराम किया करते थे।
2: उन्हें उस दूध पिलाई माँ के जज्बात का इस कदर एहतराम था कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी गाय का गोश्त नहीं खाया।
3: हद तो यह है कि खुदा बख्श ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी गाय के गोश्त को हाथ नहीं लगाया।
0: जी हाँ, और यह सिलसिला हनूज बरकरार है।
1: इन किताबों का मालिक एक गरीब आदमी की मौत मरा।
2: उसने अपनी सारी दौलत इन किताबों के हासिल करने और उनकी हिफाजत के लिए एक खूबसूरत इमारत की तामीर में खर्च कर दी।
3: इस हसीन इमारत की तामीर पर उस वक्त 80,000 रुपए खर्च हुए थे।
0: 1891 में इस लाइब्रेरी के कायम करने वाले ने अपने निजी कुतुबखाना को अवाम के नजर कर दिया
1: और सूबाई हुकूमत को इसका इंतजाम कार मुंतखब किया।
2: और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की कोशिशों से 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद के जरिया तस्कील करदा एक आला अख्तियारी बोर्ड ने इसका इंतजाम और देख रेख अपने हाथ में ले लिया।
3: आखिरकार 1969 के दिसंबर में पार्लियामेंट ने खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट मंजूर करके लाइब्रेरी के एक कौमी अहमियत का अदारा करार दे दिया।
0: खुदा बख्श खां की पैदाइश बिहार के शहर छपरा में 2 अगस्त 1842 ईस्वी को हुई थी।
1: उन्हें 1883 में खान बहादुर का खिताब मिला था
2: और 1903 ईस्वी में CIE का भी खिताब मिला।
3: 66वीं यौमे पैदाइश के दूसरे दिन यानी 3 अगस्त 1908 को खुदा बख्श पैदा करने वाले से जा मिले।
0: उन्हें लाइब्रेरी के अहाते में ही एक छोटे से खुले मुकाम पर कब्र में दफन कर दिया।
1: उनके बेटे सलाउद्दीन के बयान के मुताबिक यहाँ वो अपने सफर हयात के खात्मा पर इस्लाम के बड़े बड़े मुसन्निफीन के यादगारों के गहवारे आराम की नींद सो रहे थे।
2: एक तरफ से ये लाइब्रेरी इल्म हासिल करने वालों की प्यास बुझाती है
3: तो दूसरी तरफ यहाँ काम करने वाले 54 कारकुनों के खानदानों के सैकड़ों एरगान की परवरिश भी करती है।
0: है ना ये एक अजीम इंसान का अजीबो गरीब कारनामा।
4: हम इस अजीम रूह को करारे अखीरत पेश करते हैं।
5: मरने वाले मरते हैं।

0: लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं।
1: सामिन, हमारी गुफ्तगू की जानिब कदम बढ़ाएं इससे पहले आइए आपकी समातों के हवाले एक और प्यारी सी गजल कर रही हूँ, समात कीजिए, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।

0: तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है, तुम ही कहो के ये अंदाज़े गुफ्तगु क्या है। अर्ज किया है, रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल, बहुत खूब,
0: रगों के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है।

सामीन, हसरत मोहानी ने साल 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस इजलास में पहली बार आज़ादी कामिल का मुतालबा किया था। हसरत मोहानी का दिया हुआ नारा, जब मुल्क के मुजाहिद आज़ादी शहीद भगत सिंह और उनके दोस्तों ने मुल्क में आज़ादी के दौर में ऐसा गुजा दिया था कि हर बच्चा कहता सुनता था कि इनकलाब जिंदाबाद। आज़ादी मुल्क का ख्वाब आंखों में सजाए हसरत मोहानी ने क्या खूब लिखा है। कहते हैं, है थोड़ी दूर अभी सपनों का सफ़र अपना, है थोड़ी दूर अभी सपनों का सफ़र अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफ़र अपना। हसरत मोहानी का ख्याल था कि हकीकी आज़ादी महज अल्फाज से नहीं बल्कि जद्दोजहद और एक इनकलाब के ज़रिए हासिल होती है जो अपनी रवायात को महफूज रखता है। वो कहते हैं, कुचला है हज़ारों का लहू तब कहीं ऐ सैफ, कुचला है हज़ारों का लहू तब कहीं ऐ सैफ, आया है तेरे हुस्न में ये रंगे इनकलाब। और मुल्क के लिए मर मिटने के जज्बे से लबरेज़ ये गज़ल उन्होंने क्या खूब कही कि रस्में जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, रस्में जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन का जवाब देखिए कब तक रहे। जी हाँ सामीन, इसी तरह की और खूबसूरत गज़लों से उन्होंने हमारे मुल्क को नवाजा है। मोहब्बत के चंद अशआर देखिए, कहते हैं, छुप नहीं सकती छुपाने से मोहब्बत की नज़र, छुप नहीं सकती छुपाने से मोहब्बत की नज़र, साफ हो जाती है चेहरे से हकीकत की नज़र। इसके साथ ही सामी, हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करेंगे, लेकिन आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, आइए समात करते हैं।

सामीन, हसरत मोहानी एक ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को बहुत हिम्मत और हौसलों से भरा है अपनी शायरी के साथ। इसके साथ ही हम आज के अंजुमन को यहीं अख्ताम पजीर करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, बदलते मौसम में रखिए ख्याल, क्योंकि ये जो बदलता मौसम है ना, सबको परेशान कर रहा है और आप

सामीन, हसरत मोहानी एक ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने मुल्क को बहुत हिम्मत और हौसलों से भरा है अपनी शायरी के साथ। इसके साथ ही हम आज के अंजुमन को यहीं अख्ताम पजीर करेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, बदलते मौसम में रखिए ख्याल, क्योंकि ये जो बदलता मौसम है ना, सबको परेशान कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार एक इंसान नहीं बीमार पड़ता, उसके पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस गर्मी में, इस बदलते मौसम में बाहर निकलिए तो पानी का खास ख्याल रखिए, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि बेज़रूरत घर से बाहर ना निकला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन अच्छी बातों के साथ अपनी दोस्तों मेज़बान शगुफ्ता को दीजिए इजाज़त आज के इस उर्दू प्रोग्राम के साथ ही। मैं कहती हूँ आप सभी को खुदा हाफिज़। अपना रखिए ख्याल और सबका रखिए ख्याल।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। ये प्रोग्राम आकाशवाणी पटना दरभंगा से प्रसारित किया गया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोता, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम डसमंजरी। कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत ए आर रहमान का। फिल्म का नाम है ताल।

0: साथिया फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, साधना सरगम मुर्तजा और कादिर की आवाज़ों में, बोल थे गुलजार के, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम था साथिया। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम दस मंजरे। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मिशन कश्मीर फिल्म से, शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। बोल हैं राहत इंदौरी के और संगीत शंकर ईशान लॉय का।

सोल्जर फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में, बोल थे समीर के और संगीत अनु मलिक का।

सिर्फ तुम इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, बोल थे समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम डिसमंजरी अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पपिया गांगुली की आवाज़ में कुछ गीत और भजन। सबसे पहले सुनिए गोपाल सिंह नेपाली की रचना, दूर जाकर न कोई किनारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे।

अब लीजिए सुनिए रामाकांत अवस्थी की रचना, धीरे धीरे बात करो सारी रात प्यार से।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पपिया गांगुली की आवाज में गीत और भजन।

कार्यक्रम की अगली पेशकश ममता तू न गई मेरे मन से, रचना तुलसीदास की है।

पपिया गांगुली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भजन। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं एक और भजन। प्रभु चरणों में रीत लगा रे, जन्म सफल हो जाए। रचना है ब्रह्मानंद जी की।

0: पपिया गांगुली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कुछ गीत और भजन। इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। बोल हैं समीर के और संगीत हिमेश रेशमिया का।

अबली जी सुनिए, रिफ्यूजी फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे तेरे, बॉम्बे फिल्म का गाना चित्रा की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गाना होगा तेरे नाम फिल्म से, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, बोल थे समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अब लीजिए सुनिए बिच्छू फिल्म का गाना। राम शंकर, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में बोल हैं समीर के, धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं उमेश कुमार सिंह और मनोरंजन ओझा।

0: और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे उमेश कुमार सिंह और मनोरंजन ओझा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
5: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहन सखियों को रेडियो सखी गुंजन कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जनगणना किसी देश में रहने वाले लोगों की गिनती करने और उनके बारे में जानकारी जुटाने की प्रक्रिया है। भारत में समय समय पर जनगणना कराई जाती है, जिससे सरकार को ये पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी आयु, शिक्षा, रोजगार, भाषा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में कराई जाती है। वर्ष 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी बहनों, और ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। लोगों को स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की भी सुविधा दी जाएगी। बहनों, जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों और आवासों की जानकारी एकत्र करने का होगा, और दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या जनगणना का होगा। बहनों, जनगणना के दौरान सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं। लोगों द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है और केवल सरकारी योजनाओं नीतियों के निर्माण में उपयोग की जाती है। बहनों, हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जनगणना के समय सही और पूरी जानकारी दें। सही जानकारी से सरकार बेहतर योजनाएं बना सकती है और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। बहनों, जनगणना 2027 देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमें देश की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करती है और भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने का आधार प्रदान करती है। इसलिए सभी नागरिकों को जनगणना में सहयोग करना चाहिए। और बहनों, आज के समय में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि नई नई स्किल्स सीखना भी बहुत जरूरी है। कौशल विकास से हम अपनी योग्यता और क्षमता बढ़ा सकते हैं, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बहनों, हर व्यक्ति को अपने आसपास उपलब्ध कौशल विकास के मौके की तलाश करनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर सीखना, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, लेखन, इलेक्ट्रीशियन का काम, भाषा सीखना, चित्रकला, संगीत, खेल या अन्य तकनीकी प्रशिक्षण। ये कौशल हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। बहनों, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार नए कौशल सीख सकते हैं। आज कई संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र कम खर्च में या फिर निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी अनेक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है बहनों, जिनसे घर बैठे नई चीजें सीखी जा सकती है। बहनों, हमें खाली समय का सदुपयोग करते हुए कौशल सीखने चाहिए। इससे हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और हम समाज और देश के विकास में योगदान भी दे सकते हैं। बहनों, कौशल विकास सफलता की कुंजी है, इसलिए हर व्यक्ति को सीखने के अवसर खोजने चाहिए और अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। बहनों, भारत सरकार भी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कई कल्याण योजनाएं चला रही हैं, जिसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है और वे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। बहनों, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनमें से एक है नई रोशनी योजना। इसके तहत महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, बैंकिंग और डिजिटल साक्षरता की जानकारी दी जाती है। इससे महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नई मंजिल योजना, इस योजना में उन युवाओं और महिलाओं के लिए जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी हैं, इसके माध्यम से शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के तहत महिलाएं छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से बिना गारंटी के ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, यह संस्था अल्पसंख्यक महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इससे वे छोटे उद्योग, दुकान, सिलाई कढ़ाई या अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती है। अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जिसमें उनको शिक्षा के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, जिससे वे की अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। बहनों, अल्पसंख्यक महिला कल्याण योजनाएं महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं अपने जीवन स्तर को सुधार सकती हैं। तो बहनों, आप भी इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं और देश के विकास में योगदान दे सकती हैं। इसके अलावा बहनों, हम अपना योगदान मानवता की सेवा करके भी दे सकते हैं, और वो है रक्तदान और अंगदान। इनके माध्यम से हम किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन बचाने में मदद कर सकते हैं। बहनों, रक्तदान यानी किसी जरूरतमंद को अपना खून देना, ये एक बहुत ही नेक और मानवता भरा काम है। बहनों, जब किसी का एक्सीडेंट या ऑपरेशन या किसी गंभीर बीमारी से खून की जरूरत होती है, हम जो खून देते हैं वो उनसे हम किसी की जान बचा सकते हैं। बहनों, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसमें केवल एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ही दान किया जा सकता है। इसलिए रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। रक्तदान करने से न केवल जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन मिलता है, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना भी बढ़ती है। आपको जानकारी दे दे बहनों, हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्तदान के माध्यम से जीवन बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बहनों, हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। रक्तदान करके हम किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा और खुशी ला सकते हैं। इसी तरह से बहनों, हम अपने शरीर के किसी अंग जैसे आँख, गुर्दा, लीवर, हृदय को जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दान कर सकते हैं। अंगदान से कई लोगों को नया जीवन और नई उम्मीद मिल सकती है। बहनों, जब भी हम इस दुनिया से जाएं, हम अंगदान करके गंभीर रोगियों को जीवन बचा सकते हैं, दे सकते हैं। नेत्रहीन से दृष्टिहीन व्यक्ति को देखने की क्षमता मिल जाती है। नेत्रदान से दृष्टिहीन व्यक्ति को देखने की क्षमता मिल सकती है। बहनों, ये मानवता और परोपकार का महान कार्य है। एक अंगदाता कई लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है। बहनों, हमें रक्तदान और अंगदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताना चाहिए। बहनों, रक्तदान और अंगदान महादान कहलाता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। यह निस्वार्थ सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण है।
हमें मानवता की भलाई के

रक्तदान और अंगदान के महत्व को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। और बहनों, अब हम बढ़ते हैं अपने एक विशेष कार्यक्रम की ओर, जो है थीम पर आधारित फिल्म संगीत। बहनों, इंसान भगवान भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है। एक अच्छा इंसान वही है जो सही रास्ता पर चले, दूसरों की मदद करे, बड़ों का सम्मान करे और छोटों से प्यार करे। जब मेहनतकश इंसान जब जाग उठते हैं, तो बदलाव की नई कहानी लिखी जाती है। अपने परिश्रम, साहस और एकता से देश और समाज के प्रतीक का आधार बनते हैं। मेहनतकश इंसान जब जाग उठते हैं, संघर्ष के दीपक फिर जग उठते हैं। उनकी हाथों में होती है बदलाव की ताकत, तो किस्मत के बाद बंद दरवाजे भी खुल उठते हैं।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया।

0: जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहे हिंदुस्तान।
1: मैनो इंसान का इंसान से रिश्ता प्रेम सम्मान विश्वास का होना चाहिए। जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और जरूरत के समय साथ खड़े होते हैं तो समाज में भाईचारा और सद्भाव बना रहता है। इंसान का इंसान से रिश्ता बना रहे, हर दिल में प्रेम और विश्वास बना रहे, नफरत की दीवारें सब टूट जाएं, दुनिया में इंसानियत का प्रकाश बना रहे।

इस टुकड़े पर हक मेरा है, उस चप्पे पर हक तेरा है, इस वहम

0: उस रोज ये धरती गाए।
1: बहनों, इंसानियत ही वो गुण है जो एक इंसान को महान बनाता है। अच्छे विचार और अच्छे कर्म इंसान के सबसे बड़ा आभूषण है। जब इंसान जागरूक होता है तो वो अपने परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देता है। वो दूसरों को सही रास्ता दिखाता है, मेहनत करके एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग करता है।

बहनों, जीवन में आने वाली खुशियाँ और कठिनाइयाँ इंसान को बहुत कुछ सिखाती है और यही कारण है कि संसार में कभी कभी इंसान बदल भी जाता है। समय, परिस्थितियाँ, अनुभव और जिम्मेदारियाँ व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को बदल देती है और कभी ये बदलाव अच्छा भी होता है तो कभी लोगों को दुख भी पहुँचा सकता है। संसार में कभी कभी इंसान बदल जाता है, वक्त के साथ उसका अंदाज भी बदल जाता है।

मैनू आज के समय में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में शांति बनी रहती है। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, प्यार से बढ़कर कोई कर्म नहीं। जो दूसरों की मदद में आगे रहता है, उससे बेहतर कोई इंसान नहीं।

बहनों, इंसान बनना बड़ी बात नहीं, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं।

0: हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए रेडियो सखी गुंजन कुमार को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। किसलय कार्यक्रम में प्रस्तुत है वार्ता, किशोरों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जरूरी। वार्ताकार है रीना राजीव।
3: आज के समय में लोकतंत्र

आधारित प्रणाली सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन व्यवस्था के केंद्र में होती है। ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकती है, लेकिन कोई भी लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक अपनी जिम्मेवारी को समझें, चुनाव में भाग लें और अच्छे नेताओं का चयन करें। तभी लोकतंत्र के माध्यम से देश तथा समाज प्रगति की राह पे अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन कई बार व्यवहार में ऐसा नहीं भी होता है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार मतदान होने से लोकतंत्र के कमजोर होने की आशंका हो जाती है। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें भाग लेने वाले नागरिक अपने राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं। विशेष रूप से युवाओं और किशोरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो राष्ट्र की नींव होते हैं, या यूं कहें कि वे ही देश के कर्णधार होते हैं। किशोर यदि जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र तो हार ही जाएगा। इसलिए किशोरों में राजनीतिक चेतना की अति आवश्यकता है। यदि किशोरों में राजनीतिक चेतना होगी, राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे, तो न वह केवल अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि भविष्य में एक सशक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी कर सकेंगे। आज के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं। बच्चों को स्कूल में ही अपनी राजनीतिक कर्तव्यों की बुनियादी अर्थ को बताना चाहिए। स्कूल में शिक्षक, घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी अपने अनुभवों से बच्चों में धीरे धीरे अच्छे संस्कार के साथ देश के प्रति कर्तव्य और उनके नागरिक अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। बचपन से ही यह एहसास दिलाना बहुत आवश्यक है कि लोकतंत्र का आधार जनता यानी हम सब हैं, और हमारा भविष्य अच्छा हो इसके लिए अच्छी सरकार चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि आखिर राजनीतिक चेतना का वास्तविक अर्थ होता क्या है। एक आम समझ यह है कि मतदान में हिस्सा लेना ही राजनीतिक चेतना है। वास्तव में राजनीतिक चेतना का तात्पर्य सिर्फ चुनावों में वोट डालने तक सीमित नहीं है। राजनीतिक चेतना का एक व्यापक अर्थ है। राजनीतिक चेतना का एक मूल आशय है राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होना, सरकार की नीतियों की परख होना, सरकार के कार्यों की समीक्षा करने की सामर्थ्य और जनहित के मुद्दों के प्रति सजगता, और इन सब के आगे संविधान के प्रावधानों की समुचित जानकारी। ये सारी बातें अगर किशोर वर्ग में हैं, तभी वे भविष्य में मतदान में शामिल होकर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कर्तव्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। इन गुणों के अभाव में सही उम्मीदवार का चयन बड़ा ही मुश्किल है, और हमारी भूमिका लोकतंत्र में दर्शक मात्र की हो सकती है। राजनीतिक चेतना की जरूरत समाज के हर वर्ग को है, लेकिन किशोरों और युवाओं के लिए इसका अलग से खास महत्व है। युवाओं को देश का कर्णधार माना जाता है। आज के किशोर ही देश के भविष्य की नींव है। अगर वे आज जागरूक होंगे, तभी तो कल देश को सक्षम और बेहतर नेतृत्व मिल पाएगा। दूसरा, राजनीतिक रूप से सजग और सचेत किशोर वर्ग समाज में फैली कुरीतियों और समस्याओं की पहचान कर सकता है, आगे चलकर इनको चुनौती दे सकता है और इनसे संघर्ष कर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तीसरा, किशोर ही राष्ट्र की नींव है, और कहा जाता है कि जागरूक युवा सशक्त समाज। स्वाभाविक है, राजनीतिक रूप से जागरूक युवा ही ऐसा करने में सफल हो सकते हैं, और इसकी नींव किशोरावस्था में ही संभव है। किशोरों में राजनीतिक चेतना की अनिवार्यता का चौथा और महत्वपूर्ण कारण है नेतृत्व क्षमता का विकास। किशोरावस्था में राजनीतिक सोच विकसित होने से उनमें राजनीतिक गुण उभरते हैं। भविष्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। जब किशोरों में राजनीतिक चेतना होती है, तभी युवावस्था में राजनीतिक और उसकी भागीदारी संभव है। जब उनमें राजनीतिक चेतना होती है, तब सरकार को जनहित की नीतियां बनाने में एक प्रकार से मार्गदर्शन मिल जाता है। जनहित की नीतियां पूरे समाज के लिए होती हैं, और एक प्रकार से राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण युवा सरकार को मजबूर करता है कि वो जनहित के मुद्दों को ही अपनी नीतियों के केंद्र में रखे। किशोरों में राजनीतिक चेतना से लोकतंत्र मजबूत होता है। जब युवा राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है, तो लोकतंत्र को कई दिशा मिलती है।

जिस तरह बालों को घना, काला और मजबूत करने के लिए बचपन से ही उनकी जड़ों में तेल लगाने की सलाह दी जाती है, उसी प्रकार से देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किशोरावस्था में ही संवैधानिक व्यवस्था, मतदान की महत्ता, मतदान की प्रक्रिया, चुनाव का महत्व आदि की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। किशोरों में राजनीतिक चेतना के लिए उन्हें संसद, विधानमंडल के साथ साथ जिला और पंचायत स्तर पर निर्वाचन और उन्हें के महत्व की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसके माध्यम से ही समुचित विकास संभव है, ऐसी अवधारणा की नींव किशोरावस्था में ही पड़नी चाहिए। किशोरावस्था में ही अपने आसपास की समस्याओं की पहचान करना और यह समझ विकसित करना होगा कि इसका समाधान लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव है। किशोरावस्था में राजनीतिक चेतना देश और समाज के लिए सही विकास को सुनिश्चित करता है। इसके लिए यह आवश्यक भी है कि देश में शिक्षा का उचित प्रसार हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जाहिर है किशोरों में राजनीतिक चेतना के लिए उनका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के अभाव में राजनीतिक भटकाव हो सकता है। सही और गलत की पहचान बिना शिक्षा के मुश्किल है। शिक्षा के माध्यम से ही देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ आबादी में युवाओं की संख्या भी दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे में भारत को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उसे अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति में किशोरों और युवाओं का भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तेजी से बदलती दुनिया में किशोरों और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं को देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब थोड़ी चर्चा करें कि अगर किशोरों में राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। ये जान लीजिए कि यदि राजनीतिक चेतना की कमी होगी तो सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन बने रहेंगे। इसका लाभ अवसरवादी नेता उठाते हैं जिससे भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और दमनकारी नीतियों को बढ़ावा मिलता है। अशिक्षा के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता के अभाव में किशोर दिग्भ्रमित हो जाते हैं और खुद ना तो अपनी समस्याओं को पहचान कर पाते हैं और ना ही उन समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ हो पाते हैं। राजनीतिक चेतना की कमी जब युवाओं में होती है तो वह धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद आदि के चंगुल में फंस जाते हैं और सही मार्ग भी उन्हें दिखाई नहीं देता। फलस्वरूप एक ऐसी शासन व्यवस्था के पनपने की संभावना बढ़ जाती है जो समाज के लिए हितकारी नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश ज्वलंत उदाहरण हैं। ऐसी चेतना के अभाव में हमारे कई पड़ोसी देशों में लंबे समय तक अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है। आइए अब बात करते हैं कि किशोरों में राजनीतिक चेतना को कैसे लाया जाए। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। पहले भी मैंने ये चर्चा की है कि राजनीतिक चेतना में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, अतः पाठ्यक्रम में राजनीतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र को प्रभावी ढंग से शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जाना चाहिए ताकि सब किशोरों के लिए यह बोझिल न बन पाए। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनका सदुपयोग कर पर्याप्त जागरूकता फैलाई जा सकती है। डिजिटल मीडिया आज तमाम तरह की सूचनाओं के स्रोत बन गए हैं। इनका सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक सूचनाएं, नेताओं के भाषण, राजनीतिक दलों की नीतियां, उनके मैनिफेस्टो के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। राजनीतिक चेतना जागृत करने में ये काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा स्कूल और महाविद्यालय स्तर पर राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन और इसमें किशोरों की भागीदारी काफ़ी उपयोगी हो सकती है। बाल संसद, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा, वाद विवाद से किशोरों को व्यवहारिक अनुभव मिलता है और उनमें सोचने समझने की शक्ति क्षमता बढ़ जाती है, जो कि राजनीतिक चेतना के लिए अति आवश्यक है। सकारात्मक राजनीतिक चर्चाएं परिवार के अंदर भी होनी चाहिए और इनमें किशोरों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे भी राजनीतिक व्यवस्था से अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके साथ ही किशोरों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि युवा अवस्था में वो राजनीति में आने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके लिए राजनीतिक दलों

0: में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी जरूरत है। राजनीति को गंदा करके इससे दूरी बनाना किसी के हित में नहीं है, बल्कि ऐसी दूरी का दूरगामी प्रभाव देश के लिए घातक होता है। इसलिए किशोरों को राजनीतिक प्रक्रिया की जानकारी देना, उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करना हम सबकी सामूहिक और राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। राजनीतिक चेतना सिर्फ एक विषय नहीं, इसे एक सोच समझना चाहिए। ऐसी सोच जो एक व्यक्ति को जिम्मेवार नागरिक बनाता है। किशोरों में राजनीतिक चेतना अगर समय रहते विकसित हो जाए तो न वो केवल अपने भविष्य बल्कि देश के भविष्य को भी संभाल सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। अतः समय की यह मांग है कि शिक्षा के साथ किशोरों में राजनीतिक चेतना भी विकसित की जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जागरूक किशोर ही सशक्त और विकसित भारत की नींव रख सकता है।
1: किसले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, किशोरों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जरूरी। वार्ताकार थी रीना राजीव।

और हमने अपनी जान कहा।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आरडी वर्मन और साथियों को। फिल्म का नाम है शान। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी वर्मन।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म साथी में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: फिल्म प्रेम रोग में सुनी लता मंगेशकर को, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम के अंत में सुनी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है इज्जत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के

0: को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के आसपास हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री कुशवाहा का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि केवल उन्होंने ही नामांकन पत्र भरा है। उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा अब से कुछ देर बाद की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मंत्री ब्रजबिहारी प्रसाद की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पटना स्थित स्मृति संग्रहालय में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने ब्रजबिहारी प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना और शेखपुरा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका है। पटना के विश्वकुमार भवन की 13वीं मंजिल पर आज तड़के आग लग गई। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा। बिस्कोमान की इस मंजिल पर बेल्ट्रॉन का कार्यालय है। आग लगने के चलते कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरावगंज के पास NH 31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर सारांश कुमार का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के लिए घूस ले रहा था। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان سائنس، ٹیکنالوجی، خلائی مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر اور ڈرون جیسے شعبوں میں قابل ذکر حصولیابیاں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا

0: पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अहम स्टार्टअप मराकज में शामिल है और इसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गांव के नौजवानों का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने खेलों में नौजवानों के शानदार मुजाहरे की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी मुकाबले में मुल्क की शान बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने जिद्दत और सनतकारी को फ़रोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों से NDA हुकूमत नौजवान क़यादत वाली तरक्की की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे मुल्क के नौजवानों की खुद एतमादी में इजाफा हुआ है और वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबा पूरे मुल्क में लड़कियों की इख्तियारकारी की एक बड़ी मुहिम बन गई है। ख़वातीन व इत्फाल तरक्यात वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों में पैदाइश के वक्त जिनसी तनासब 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं सेकेंडरी सतह पर तालिबात का दाखिला भी तकरीबन 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। महकमा ने कहा है कि यह मनसूबा तालिबात की तालीम, तहफ़ और इख्तियारकारी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडियन फूड सिक्योरिटी और FSSAI ने खुर्दनी अशिया और उनकी पैकेजिंग में धात के पिन और तारों के इस्तेमाल को फौरी असर से बंद करने का हुक्म दिया है। अथॉरिटी ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत दीगर खुर्दनी पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल सारिफिन की सेहत के लिए संगीन खतरा बन रहा है। FSSAI के मुताबिक अवामी सेहत को देखते हुए खुर्दनी प्रोडक्ट ताजरों को पैकेट में पिन और तार का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कौमी सदर ओहदा के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जनाब कुशवाहा का इस ओहदा के लिए बिला मुकाबला इंतखाब तय है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया है। उनके इंतखाब का रस्मी ऐलान अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने साबिक वज़ीर ब्रज बिहारी प्रसाद की 28वीं बरसी के मौके पर पटना वाक़े मेमोरियल म्यूज़ियम में मुनक़िद कुल मजहबी प्रार्थना सभा में शिरकत की। वज़ीर आला ने ब्रज बिहारी प्रसाद के मुजस्मे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। रियासत के 19 अजला तक मानसून की आमद हो चुकी है। मानसून का शुमाली हद अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रहा है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा, रोहतास, अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना और शेखपुरा ज़िले में कुछ मकाम पर ज़बरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इस दौरान तेज़ हवा के साथ बर्फबारी का भी अंदेशा है। पटना में बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर आज सुबह आग लग गई। फायर ब्रिगेड दस्तों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड अफसर अजीत कुमार ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जांच मुकम्मल होने के बाद ही सही वजूहात का पता चल सकेगा। बिस्कुमान की इस मंजिल पर बेल्ट्रॉन का दफ्तर है। आग लगने के सबब कई अहम कागजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात खाकिस्तर हो गए। कटिहार ज़िले के कोढ़ा थाना इलाके के तहत जुराबगंज के करीब NH 31 पर एक बस के बेकाबू होकर पलट जाने से 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें से 15 की हालत नाजुक बताई जाती है। संगीन तौर पर जख्मियों को इब्तदाई इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए GMCH पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। मगरबी चंपारण जिला के योगापट्टी ब्लॉक बाशिंदा सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में मुनक़िद पहले आलमी योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। बेतिया पहुंचने पर सारांश कुमार का बैंड बाजे के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर सर्किल दफ्तर के महसूलात मुलाजिम सुजीत कुमार को 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलाजिम शिकायत कुनिंदा से जमीन की पैमाइश के एवज में रिश्वत ले रहा था। समस्तीपुर जिला की बढ़ौना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से माँ बेटे की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान

0: बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमएस स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई आर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर, कोरेजस, डिसीजन मेकर एंड एथिकल लीडर।
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा

0: स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
2: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता।

0: और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म लेकिन में सुनिए लता मंगेशकर को।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर किशोर कुमार और येसुदास को फिल्म त्रिशूल में

लीजिए सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
0: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मन चाहे गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। मुंजाई गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाटिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच है गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंद गढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, अदिति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम सर मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं। समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता। और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूंडनुन और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। अब सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
1: मनचाही गीत
2: मनचाही गीत
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
1: क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छू जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों

0: से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं यह यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
1: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र शकुनी की आज्ञा।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: राजकुमारी, मैं कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। वो देखिए, आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो, वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है?
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह

0: मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरु वंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को यह गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनि के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
1: जो आपकी

0: कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी, जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा इंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने ही हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराज धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मान सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं। वो

0: गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे

0: देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
1: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
0: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
1: पूछो।
0: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा?
1: गांधारी।
0: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
1: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ। आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ पुत्री।
0: क्यों ना दिलाऊं? आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: تتراشت.
1: आप विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है, आइए आइए ना।
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी, न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया। जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है। अपना हाथ मुझे दो गंधारी।
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो
0: क्या।
1: अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ।
0: क्या हुआ, गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई। फिर प्रयत्न करती हूँ।
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा।
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते। माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती। उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर, न जाने किस किस से दी थी।
1: महाराज
0: गांधारी, मैंने

0: बिना हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है।
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है।
0: क्या
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है, यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है, मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है।
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गांधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं है?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी, मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा, तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी, और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया, यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता।
1: महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो, मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं।
0: गांधारी, देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा, ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सच, असहनी है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
2: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
2: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
2: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
2: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
2: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
3: कांधारी,
2: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
3: सुना तुमने कांधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
2: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत हुआ।
3: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
2: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
3: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थी गांधारी।
2: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
3: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
2: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
3: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट कर

0: करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तिनापुर का भावी शासन?
0: नहीं जनता तेरी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: तो महाराज ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गंधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कहो सूत।
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं? क्यों नहीं हुआ? प्रबल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी?

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती। किस पर क्या है?
0: किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ हैं? उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुने की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधर?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें

0: प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही ना रहते।
1: जानता हूं गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
0: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज
1: कौन? विदुर आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
1: अच्छा,
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
1: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधू के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
0: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
0: अर्जुन ने?
1: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित है।
1: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
1: विदुर, तुम्हारी इस शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
0: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे
0: स्कूल्स
1: में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
0: एब्सोल्युटली
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी बड़ी, बड़ी फिल्म थी,
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी, हाँ। आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म,
1: हाँ।
0: फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी,
0: हाँ।
1: और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा,
0: हाँ।
1: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था,
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: आरडी
1: बर्मन साहब का,
0: हाँ।
1: और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर उस संगीत पर कुछ उसमें कुछ नयापन लाना,
0: हाँ।
1: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, सो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था, आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके

से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके इन्हों गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डेंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वाज मोर ऑफ अ फील फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया, नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंतरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीज़ें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया, अंतरमाली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरमाली जी, और वो हर एक चीज़ समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो वो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया है, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूँगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज़ वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ वो नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही।
0: किस तरह के? क्या क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हम हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे। लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले। और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के, जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा,
1: चित्रलेखा करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है। सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और इसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है। तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं
0: फिल्में
1: किया।
0: भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं
1: नहीं
0: किया।
1: किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं,
1: हाँ।
0: देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना,
1: हाँ।
0: एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह
1: करेक्ट
0: सकते हैं
1: करेक्ट
0: जिसको।
1: हाँ अंदर से आता
0: इसको
1: है।
0: आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है,
1: है
0: लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है। वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ। मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आप अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा। लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस ज़माने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था। तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूज़िक। और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूज़िक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था, मतलब कि ये म्यूज़िक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज़ ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूज़िक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी, जो अल्फाज जो हैं अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूज़िक को सुन के 10 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे

रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में शाम के ठीक 4:29 और 48 सेकंड हो चुके हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांतकालीन सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी दोस्त अस्मिता सिंह,
2: और मैं हूं नीलिमा। आज के इस सुहाने सफर में युववाणी लेकर आया है आपके लिए बहुत कुछ खास। अगले कुछ घंटों तक हम और आप रहेंगे साथ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने नीलिमा, और हम आज चर्चा करेंगे वर्ल्ड सेविंग मशीन डे, एलिमनिज्म यानी रंजकहीनता के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे रोचक तथ्यों के बारे में।
2: इसके साथ साथ आपको बताएंगे स्टार्टअप सैटरडे में कुछ खास, क्योंकि अभी आपको

बताएंगे नहीं, डायरेक्टली आपको एक सरप्राइज देंगे कि क्या आपके लिए हम खास लेकर आए हैं, साथ में जॉब अपडेट्स और करंट अफेयर्स तो होंगे ही, और बातों का दौर तो जारी रहेगा, पर संगीत के बिना युववाणी अधूरी है। तो चलिए माहौल को थोड़ा सा सुरीला बनाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मासूम चेहरे की फिल्म अंश से ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के सबसे पहले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताते हैं प्रेरक पंक्ति के बारे में।
1: मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है, यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है।
0: बिल्कुल अस्मिता, इस विचार के माध्यम से तुलसीदास जी हमें इंसानियत और अच्छे आचरण का रास्ता दिखा रहे हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। दया ही धर्म का मूल है, इसका मतलब है कि किसी भी धर्म की शुरुआत या उसकी नींव दया से ही होती है। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति या जीवों के प्रति दया की भावना नहीं है, तो आपकी पूजा पाठ या धार्मिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान को हमेशा दयालु बन के रहना चाहिए।
1: अहंकार समस्त पापों की जड़ है। यहाँ अहंकार का मतलब घमंड या ईगो से है। जब इंसान के भीतर घमंड आ जाता है, तो वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। यही घमंड उसे गलत रास्ते पर ले जाता है, झूठ बोलता है या नुकसान पहुंचाता है। यानी दुनिया के ज्यादातर बुरे काम या पाप इसी घमंड की वजह से जन्म लेते हैं।
0: दोस्तों, तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि अगर जीवन में सही रास्ते पर चलना है, तो मन में दया रखिए और अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। इसी प्रेरक पंक्ति के साथ आइए सुनते हैं हमारे प्रोग्राम का अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मिलन अभी आधा अधूरा है, फिल्म विवाह। इसके गायक हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: आकाशवाणी में फिर से आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 जून, दिन शनिवार। आज का दिन हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और एक खास डे

0: है जो आज के दिन मनाते हैं हम, और वो है वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे।
1: दोस्तों, एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता एक ऐसी आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन की कमी होती है। अक्सर लोग इसे बीमारी या अभिशाप समझ लेते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक प्राकृतिक स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करती। समाज में आज भी कई लोग हैं जो एल्बिनिज्म से जुड़ी भ्रांतियों के कारण भेदभाव का शिकार होते हैं।
0: बिल्कुल स्मिता, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि समाज में जो सामान्य होने की परिभाषा बनी हुई है वह कई बार बहुत सीमित है। एल्बिनिज्म के साथ रहने वाले लोगों को अक्सर तिरस्कार या दया की दृष्टि से देखा जाता है। आज का दिन हमें ये याद दिलाने के लिए है कि विविधता ही मानवता की असली खूबसूरती है। हमें उन्हें दया की नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसरों की जरूरत है।
1: सही कहा आपने नीलिमा। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो इन लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा और आंखों को बचाने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन सुविधाओं की कमी और जागरूकता के अभाव में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों से लेकर कार्यस्थलों तक हमें उनके लिए ऐसे संसाधन और वातावरण तैयार करने होंगे जो उन्हें असहज महसूस ना होने दे, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे।
0: समावेशी समाज का अर्थ ही यही है कि हम हर किसी को उसकी पूरी क्षमता के साथ स्वीकार करें। हमें उनकी काबिलियत को देखना चाहिए, ना कि उनके शारीरिक रूप को। आज जब हम इस दिन को मना रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ना केवल जागरूक होंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इन गलत धारणाओं के खिलाफ शिक्षित करेंगे।
1: बिल्कुल सही। जब तक हम भेदभाव की दीवारें नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये सशक्त समाज की कल्पना अधूरी है। एल्बिनिज्म के साथ जी रहे लोगों के पास भी सपने हैं, हुनर है और देश के विकास में योगदान देने की इच्छा है। उन्हें बस एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां उनकी प्रतिभा को रंग रूप से ऊपर उठकर देखा जाए।
0: अंत में यही कहेंगे दोस्तों कि आज का ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक बदलाव की शुरुआत है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट की वजह से अलग-थलग महसूस ना करे, क्योंकि असली पहचान वो नहीं जो बाहर से दिखती है बल्कि वो है जो हमारे विचारों और हमारे व्यवहार से झलकती है। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले ट्रैक को सुनने का, तो आइए सुनते हैं हमारा अगला गाना।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये लड़का है, फिल्म कभी खुशी कभी गम। आवाज थी अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज।
1: अब दोस्तों बारी है स्पोर्ट्स अपडेट की, तो आपको बता दें कि
0: ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल्स में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। दोस्तों अब आइए सुनाते हैं आपको हमारे प्रोग्राम का अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना तेरे नैना मार ही डालेंगे फिल्म जय हो से शान की आवाज़ में। वाकई में क्या गाना है! और ये फिल्म अस्मिता, क्या इसकी खासियत है कि इस फिल्म में ये कहा गया है कि आप मदद करें और तीन लोगों को और बोले मदद करने के लिए।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, अगर यही तो ह्यूमैनिटी है, हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो काफ़ी आगे हम बढ़ सकते हैं और अपनी सोसाइटी को एक दिशा दे सकते हैं। बातें और भी हैं करने को, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: दोस्तों, आज है सैटरडे और आज के दिन युवानी लाता है आपके लिए स्टार्टअप सैटरडे सेगमेंट। आज के सेगमेंट में जानिए क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भावना सिन्हा से।
6: आकाशवाणी के पटना केंद्र से जुड़ने के लिए तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि

0: आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दें।
1: मैं डॉक्टर भावना सिन्हा, मैं डीन आईटी पटना वुमेन्स कॉलेज हूँ और एमसीए डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ।
0: जी, तो श्रोता हम आपको आज बता दें कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के बारे में आज भावना जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू दिल से हमारे श्रोताओं की तरफ से भी कि उनके लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला।
1: धन्यवाद।
0: तो भावना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर है क्या?
1: क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी नई

0: और उस पे कंप्यूटिंग किया जा सकता है।
1: भावना जी, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से कैसे अलग है?
0: जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में हमारे पास वो बाइनरी कोड पे चलती है जहाँ पे जीरो और वन होता है। जीरो का मतलब हो गया ऑफ और वन का मतलब हो गया ऑन, और इस तरीके से वो काम करता है और साथ में वो सिक्वेंशियल तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम क्यूबिक्स पे काम करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करते हैं, तो ये क्योंकि एक ही समय में जीरो भी और वन भी हो सकता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं, तो मान लीजिए कोई एक सिक्का है, तो जब उसे टॉस करते हैं तो कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में या तो वो हेड्स आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही एक बार में आ सकता है। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो टॉस करने के बाद वापस वो जमीन पे आए, उसके पहले ही हवा में वो जितनी बार हेड्स और टेल हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम जान लेते हैं क्यूबिट्स के थ्रू। या जैसे एक और एग्जांपल से इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है और उसमें किसी एक बुक को सर्च कर रहे हैं या पढ़ना है कि क्या है, तो अगर हम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो वो लीनियर सर्च करता है, मतलब एक एक करके सभी बुक्स को खोजेगा और तब जाके उसे वो बुक मिलेगा जिसे हम खोज रहे थे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में एक ही बार में जितने भी बुक्स हैं वो उन सभी को स्कैन कर सकता है, तो इसलिए बहुत ही फास्ट होता है, कन्वेंशनल कंप्यूटिंग से बहुत फास्ट होगा।
1: भावना जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है आज के डिजिटल युग में?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक तरीके से हमारा इनविजिबल असिस्टेंट बन गया है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी यूज हो रहा है, चाहे हम यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो और वहाँ हमारे पास कोई भी अपने पसंद का वीडियो आ जाए, या फिर हेल्थ केयर में हो, डेटा पे चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जितना ज्यादा हमारे पास डेटा, करेक्ट डेटा होगा, उतने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई भी डॉक्टर है, तो मान लीजिए उसे किसी बीमारी को पहचानना है, तो उस डेटा के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से हेल्थ केयर पे भी काम कर सकता है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हमारे मोबाइल में भी AI लगा हुआ है, आप गूगल लेंस से अगर किसी चीज को स्कैन करें, कोई भी नया पौधा है, तो आप स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है, अब तो हर जगह यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन भविष्य में कैसे काम करेगा?
0: क्वांटम कंप्यूटिंग और AI का कॉम्बिनेशन तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि AI डेटा पे चलता है और ये बहुत एक्यूरेट आपको प्रेडिक्शंस दे सकता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग इसे स्पीड देने का काम करेगा, क्योंकि ये क्यूबिट्स पे काम करता है तो ये स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के थ्रू अगर हम किसी चीज को रिसर्च कर रहे हैं और उसमें अगर हमें 6 महीने से 1 साल लग रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में वो विद इन अ मिनट उसका रिजल्ट हमारे पास आ सकता है।
1: काफी टाइम सेव लग रहा है।
0: बिल्कुल।
1: आप भारत को AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में किस स्टेज पर देखती हैं?
0: AI में तो हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम एक तरीके से कहें तो भारत आज एक ग्लोबल टेक कंटेंडर की स्टेज पे है। और यहाँ पे जैसे हमारे UPI पेमेंट है, तो उसने बिल्कुल इंडिया स्टैक के जरिए AI को हर आदमी तक पहुँचाया है, तो AI पे तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम में अभी थोड़ी शुरुआत में हम हैं और ना आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से बहुत सारे नए इस तरीके के नए मिशन आ रहे हैं जिसपे क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: नीति आयोग ने AI के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर आप कुछ ब्रीफ में बता सके?
0: बिल्कुल, नेशनल क्वांटम मिशन के तौर पे इसमें करीब 6,000 करोड़ का एक स्ट्रेटेजिक प्लान प्रोजेक्ट बना है, जिसमें क्वांटम सुपर पावर बनाया जाए हमारे देश भारत को, उसका एक लक्ष्य दिया गया है। और इसमें नीति आयोग ने इस पे बहुत काम किया है और भारत को एक आत्मनिर्भर इस टेक सिक्योरिटी में बना सके, तो मेनली उसमें साइबर सिक्योरिटी पे जोर है, और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और एक तरीके से जितने भी हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाए, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। और साथ में AI के लिए भी बहुत काम किया गया है नीति आयोग के थ्रू, और AI फॉर ऑल जो विजन है जिसके थ्रू ये रखा गया है कि हर एक तक AI पहुंच सके, गरीब इंसान तक भी AI पहुंच सके, और मेनली 5 सेक्टर्स में से बांटा गया है, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और इन सभी पे काम हो रहा है। और साथ में AI स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी काम हो रहा है, जिसे एरावत नाम दिया गया है, और उस पे भी काम हो रहा है।
1: बेसिकली नीति आयोग डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश कर रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, AI फॉर ऑल यही है, डिजिटल डिवाइड कम हो सके, सभी तक AI पहुंच सके।
1: भावना जी, भारत ने AI और क्वांटम रिसर्च के लिए कौन

0: कौन से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो उनके बारे में बताएं।
1: IISc बेंगलोर हमारा क्वांटम रिसर्च में सबसे बड़ा पावर हाउस है, जहां फंडामेंटल फिजिक्स पर काम हो रहा है। देन IITs हैं, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, CDAC पुणे, सुपर कंप्यूटर्स जहां से बना हमारा, तो हार्डवेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग के कंप्यूटर को किस तरीके से हम क्वांटम कंप्यूटिंग में कन्वर्ट कर सकें उस पर काम हो रहा है।
0: भारत के युवा AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, हमें देखना है कि हम भारत के जो युवा हैं वो हमारी डिजिटल शक्ति बने, वो सिर्फ यूजर नहीं बने AI के लिए बल्कि क्रिएटर बने, और हम यही चाहेंगे कि जो भी युवा है वो AI ऐप डेवलप कर सकें, और उसके लिए उन्हें पाइथन, लीनियर अलजेब्रा, क्वांटम लॉजिक, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा और उनको सीखने की कोशिश करनी होगी।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिसनर्स को ये संदेश चाहता है कि जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे और खुद को टेक्नोलॉजिकली एजुकेट करें।
1: बिल्कुल
0: भावना जी, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आप देख रही हैं?
1: सबसे बड़ा चैलेंज
0: जी,
1: जहाँ तक चैलेंज की बात है, मैं समझूंगी कि हार्डवेयर अभी थोड़ा हमारे लिए चैलेंज है और इस पे काम होनी चाहिए, और साथ में स्टेबिलिटी, जैसे क्वांटम चिप्स इतनी नाजुक होती है कि अगर एक हल्का सा वाइब्रेशन हो तो उनका क्यूबिट स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए उन्हें बहुत कम टेम्परेचर पे, जैसे स्पेस में जो टेम्परेचर हो तो उतना ठंडा उसे रखने की जरूरत होती है, तो उस तरीके का हमारे पास एनवायरमेंट हो जहाँ पे हम इन क्यूबिट्स को बिना डिस्टर्ब किए रख सके और उस पे काम कर सके, तो इस तरीके का हमारे पास एक एनवायरमेंट और हार्डवेयर होना चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये है कि जब हम AI में काम करते हैं तो एथिक्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उस पे भी ध्यान देना चाहिए, जो डीप फेक्स आजकल होते हैं बिकॉज AI को आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, तो एथिकल यूज पता होना चाहिए और उसे उसी तरीके से यूज करना चाहिए।
0: जी मैं उसी बात पर आने वाली थी कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमारे लिसनर को थोड़ा एजुकेट करें आप।
1: बिल्कुल, ह्यूमन वैल्यूज तो बहुत जरूरी है, और अगर हम जहाँ तक देखें तो AI काम तो कर सकता है, बहुत फास्ट काम कर सकता है, डेटा के अकॉर्डिंगली वो एक्यूरेट रिजल्ट पे भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से ट्रेन किया गया है, तो इसलिए एथिकल यूज बहुत जरूरी है और वहाँ पे बायस नहीं होना है, और जो भी रिजल्ट है जिसपे उसे ट्रेन किया गया, जो ट्रेनिंग डेटा है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सटीक आंसर दे सके, ना कि बायस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर से साझा करने के लिए भावना जी।
1: थैंक
2: यू। अभी आप सुन रहे थे भावना सिन्हा से नीलिमा से बातचीत, तो आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लकी से अदनान सामी की आवाज में। आज का दिन बहुत ही रचनात्मक और खास है।
1: क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड सेविंग मशीन डे। दोस्तों, सिलाई मशीन महज लोहे और धागों की एक मशीन नहीं है, बल्कि यह वह आविष्कार है जिसने मानव इतिहास में फैशन और पहनावे के मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। सोचिए उस दौर के बारे में जब हर एक टांका हाथ से लगाया जाता था। एक मशीन ने उस मेहनत को घंटों के काम से घटाकर मिनटों में तब्दील कर दिया।
0: बिल्कुल स्मिता, सिलाई मशीन का आविष्कार न केवल एक तकनीकी क्रांति थी, बल्कि ये सामाजिक बदलाव का भी एक माध्यम बनी। 19वीं सदी में एलियास होवे द्वारा इसे पेटेंट कराए जाने के बाद ये मशीन घर घर की शोभा बन गई। इसने न केवल वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई गति दी, बल्कि लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खोला। सिलाई मशीन ने महिलाओं को

0: घर बैठे आर्थिक स्वतंत्रता दी और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा।
1: सही कहा आपने नीलिमा। और आज के फास्ट फैशन के दौर में जहां हम यूज एंड थ्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, सिलाई मशीन हमें वापस अपने जड़ों की ओर ले जाती है। आज का दौर सस्टेनेबल फैशन का है, जहां अपने पुरानी साड़ियों या कपड़ों को फिर से नया रूप देकर पहनना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है। सिलाई मशीन हमें यह सिखाती है कि किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले उसे सहेज कर उसे एक नया जीवन कैसे दिया जा सकता है।
0: और अस्मिता, सिलाई मशीन का महत्व आज भी उतना ही है जितना तब था। छोटे से लेकर बड़े फैशन हाउसेस तक और घर में सिलाई करने वाली हमारी माताओं से लेकर प्रोफेशनल टेलर्स तक, सबके हाथों में सिलाई मशीन एक सुपर पावर की तरह है। ये पेशेंस, एकाग्रता और बारीकी का प्रतीक है। आज जब हम इस मशीन को याद कर रहे हैं, तो उन सभी कुशल कारीगरों और दर्जी भाइयों को भी नमन करना चाहिए, जिनकी कलाकारी से हम किसी भी खास मौके पर खुद को सबसे अलग और सुंदर महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, सिलाई सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक मेडिटेटिव आर्ट है। ये एक धागा जब सुई के जरिए कपड़े से गुजरता है, तो वह केवल दो टुकड़ों को नहीं जोड़ता, बल्कि पुरानी यादों को नई संभावनाओं से जोड़ता है। सिलाई मशीन चलाना एक ऐसा हुनर है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, चाहे दौर कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए। हाथ की फिनिशिंग और मशीन के सिलाई का कोई मुकाबला नहीं है।
0: सही कहा स्मिता। तो दोस्तों, आज का ये दिन हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं। अगर आपके घर के किसी कोने में वो पुरानी सिलाई मशीन रखी है, तो आज उसे साफ करके देखिए, शायद वह आपसे कुछ नया बनाने का इंतजार कर रही है। आज का दिन उन सभी के लिए है जो सुई धागे के जादू से दुनिया को और भी रंगीन बनाते हैं। आइए इस मिशन के आविष्कार और इसकी उपयोगिता का जश्न मनाएं इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फलक तक फिल्म टशन से ये गीत उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज में।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है रोचक तथ्य के बारे में। तो आज हम बताएंगे बिहार के जिलों का नाम कैसे पड़ा।
0: पटना का नाम यहाँ की रक्षक मानी जाने वाली माँ पटन देवी या इसके प्राचीन नाम पाटलिपुत्र के बिगड़े हुए रूप से निकला है। हर्यंक वंश के राजा अजात शत्रु द्वारा बसाया गया ये शहर कभी पूरे भारतवर्ष की राजधानी हुआ करता था, जिसे इतिहास में पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था।
1: नालंदा का नाम प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नाग यानी सर्प देवता, नालंदा या कमल की डंडियों या नाल की अधिकता के कारण पड़ा है। 5वीं सदी में स्थापित दुनिया के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का यह घर सदियों तक पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र रहा है।
0: गया, इस पवित्र शहर का नाम गयासुर नामक एक असुर के नाम पर पड़ा है। कितनी अजीब सी बात है ना, हैरान कर देने वाली। अस्मिता,
1: बिल्कुल।
0: इसे भगवान विष्णु से वरदान मिला था कि जो भी इस धरती पर आएगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसी पौराणिक इतिहास के कारण आज भी यह मोक्ष की धरती कहलाता है, जहाँ देश विदेश से लोग पिंडदान करने आते हैं।
1: मुजफ्फरपुर शाही लीची के मिठास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। इस जिले का नाम 18वीं सदी के एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था। तिरहुत प्रमंडल का दिल कहलाने वाला ये शहर आजादी की लड़ाई के वक्त स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रमुख गढ़ हुआ करता था।
0: दरभंगा, माना गया कि दरभंगा शब्द द्वार बंग से बना है, जिसका मतलब होता है बंगाल का दरवाजा। मिथिलांचल का दिल कहलाने वाला ये ऐतिहासिक जिला अपने

0: तालाबों, मखानों की खेती, आमों की मिठास और दरभंगा राज यानी रजवाड़ी की शान और शौकत के लिए मशहूर है।
1: वैशाली इस जिले का नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र लिच्छवी है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है।
0: दोस्तों, अब बात है हमारे अगले सेगमेंट की। उसमें हम बताएंगे आपको करंट अफेयर्स। तो ग्लोबल चेस लीग का फोर्थ सीजन 3 सितंबर 2026 से बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जहां न पहुंचे पानी वहां पहुंचे वाणी। इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए मगही कार्यक्रम मागधी।

मगधी के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून के सौंसे दुनिया में मनावल जा है। एकर मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ के जे और जे अपने मन से रक्तदान कर हथिन उनका धन्यवाद देवे के है और सुरक्षित रक्त के निरंतर जरूरी के तरफ जागरूकता फैलावे के है। साल 2026 के थीम है मानवता के एक बूंद रक्तदान करथिन, जीवन बचाथिन। ई थीम ई बात पर गहराई से जोर दे है कि रक्तदान खाली एगो चिकित्सा के प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ई इंसानियत, एकजुटता और करुणा के सबसे बड़ प्रतीक है। ई विशेष दिन के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर सम्मान में मनावल जाए। ई ए बी ओ रक्त समूह के खोज करके रक्त चढ़ावे के प्रक्रिया के सुरक्षित बनेलन हल। रक्तदान के महादान भी कहल गेले है, कहे कि विज्ञान के एतहत तरक्की के बाद भी खून के कोई प्रयोगशाला में नहीं बनाल जा सकले है। अपने के दान कल गेल एक यूनिट खून एक साथ 3 लोगन के जान बचा सके है। कहे कि लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में अलग अलग कैल जा सके है। दुर्घटना, कैंसर उपचार और जटिल सर्जरी में एकर तत्काल जरूरी होब है। रक्तदान से कमजोरी नहीं आब है, बल्कि देह में नया कोशिका के निर्माण होब है। 18 से 65 साल के कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकथिन, तो हम सबके मिलके एकरा सार्थक बनावे के है। सही समय सही दिशा की ओर उठावल गेल कदम से कोई के जिंदगी बच सका है और अपन समाज के बेहतर भविष्य हो सका है, तो जरूर करथिन रक्तदान महादान। और अपने सब सुनथिन लोक भजन विष्णुकांत पाठक तरुण से।

वाह, बहुत निमन। आगे हिनका से और भी गीत सुनम। श्रोता लोगिन, महिला सशक्तिकरण के माने महिला के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से मजबूत बनावे के है, जेकरा से कि उ स्वतंत्र होके अपन निर्णय ले सकथिन। कोई भी देश के वास्तविक विकास महिला के भागीदारी के बिना संभव नहीं है। आज महिला हर क्षेत्र में अपन प्रतिभा के लोहा मनवैलन है। शिक्षा में छात्र के प्रदर्शन शानदार है। विज्ञान और अंतरिक्ष में महिला के वैज्ञानिक के अहम योगदान देश के गौरवान्वित कर रहे हैं। एकर अलावे सेना में फाइटर प्लेन उड़ावे से लेके खेल जगत में ओलंपिक पदक जीते तक महिला रूढ़िवादी के तोड़ के अपन क्षमता के साबित कैलन है। राजनीति में वो कुशल नेतृत्व कर रहलन है। आय के डिजिटल युग में महिला के लिए बहुते अवसर खुलल है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसन तकनीकी क्षेत्र में युवती के भागीदारी बढ़ल है। आज महिला खाली नौकरी नहीं कर रहलथिन है, बल्कि सफल स्टार्टअप भी चला रहलथिन है।

0: सरकारी योजना के मदद से ग्रामीण महिला भी कुटीर उद्योग के जरिए आत्मनिर्भर बन रहल थीन हैं। महिला सशक्तिकरण के दिशा में हम सब बड़ सफलता पैली है, मगर रूढ़िवादी सोच और असमानता जैसन चुनौती अभी भी बाकी है। जब बेटी के समान अवसर और सुरक्षित माहौल मिलते तब ये हमनी के राष्ट्र सही मायने में प्रगति करते। तब बेटी के खूब पढ़ाथिन लिखाथिन खिलाथिन पिलाथिन और स्वस्थ बनाथिन, काहे कि ई बात से एकदम अनजान नहीं बनथिन कि भाई बेटा बेटी एक समान हथिन। और अपने सब लगी हम ले के अली है कहानी पाठ प्रयाग के प्रसाद, कहानीकार हथिन विजय कुमार।
1: माथ पर हाथ धैले पसीना से लथपथ चुक्के मुक्के दलान के बिचला सीढ़ी पर बैठल प्रयाग चौधरी अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहलन हल। बाप रे भाप, ई दुनिया कैसे चलत। ऊपरे से आकाश आग बरसा रहल है, नीचे झारती चूल्हा पर रखल तावा जैसन जल रहल है। कुइया के पानी पताल खिल गेल, इतनो के बाद समझ न आ रहल है कि हमरा का करे के चाही आ का न करे के चाही। खुद बुद्धि गरवैया अपन बसेर छोड़ के भाग रहल है। गिद्ध न जाने कहाँ विलीन हो गेल, उ लपता हो रहल है। एहे हालत सबके होत, सबके एक न एक दिन घर छोड़ के भागे पड़ जायत, जैसन रवैया चल रहल है। बाकी भाग के भी जायत कहाँ, सगरो तो एके ऐसन है। धरती वीरान हो जायत, आज कोई न बचत, सबके सब अपन करनी के फल भोगत। ई सब ला दोषी दोसर कोई न है, सब ला दोषी हम अपने ही। अपन करनी पर सबके पछतावे परत, आज न त कल। ई सब लैकन के देख सब कुछ घर में बैठले जूम जाई थे, तो ई काहेला घर से बाहरे निकलत, का जरूरत है। अब के आवई थी हम कोन्हारा बहियार से, जहाँ टटका आम के बगीचा अभी अभी लगेली है। लखना के लैका के लाख मना कैली कि देख रे मकई के ठठेर में आग न लगाओ, तोर मकई के ठठेर जरत हमर फुलवाड़ी झरक जायत जर जायत। बाकी ऊ काहे को माने, ऊ लाख समझेला बुझेला के बादो ठठेर में आग लगा ही दे। आज बच गेल हमरा से ऊ, हम तो ऐसन झटहा चलैली कि ओकर गोरे टूट जायत। बाकी ऊ बच के निकल गेल, ओकरा बाल बाल से ऊ बचल है। अब हमरो कंधा बूढ़ा हो चलल है, समझ न आवे है कि अब ये घर परिवार कैसे चलत। कोकरो फिक्रे न है, सब अपन अपन मन के भे गेलन कैसे आखिर चलत। इतने में उनकर मंझला भाई मोसाहेब चौधरी मुंह में दतुअन आ हाथ में पितरिया लोटा ले ले आदमकलन। काहेला हल्ला करे था भैया, अब जुग जवाना कुछ बोले के न है, कुछ कहे के न है, के सुनतव। कोई कुछ जवाब दे देतव तोरो बुरा लग जतव। जे बने से कैल कर आ जे मिले से खायल कर। हमनिन के पूर्वज ही कह गेलन है, बुढ़ापा में कम खा आ गम खा। मोसाहेब प्रयाग चौधरी के समझा बुझा के चुप करा के घरे गेलन। कुछ दिन बीतल बंटवारा हो गेल, प्रयाग दुख के समुन्दर में डूब गेलन। उनका हृदय ककड़ी ऐसन फाट गेल, का हली आ अब का हमनिन हो गेली। मने मने छगुनित गुनैत रहलन, पोती के ब्याह के चिंता उनका दबोचे लगल हल। तीन तीन गो बेटा तीनों बेरोजगार, अब कैसे चलती घर, सब बांट के अलग अलग हो गेलन है। हमरो ठेहुना बांह तो रोज रोज थकले जाई थे, चिंता के चिता पर वो छटपट कर रहलन हल। इतने में नीलहा कोठी नया गांव से संबदिया आके संवाद देलक, प्रयाग बाबू हथ का। उनका नीलहा कोठी के साहेब बोलेलन है। साहेब के संवाद सुनैते मन में उधेर बुन करैत, उ हिछली बछेड़ी पर सवार होके मुरझायल मन से नीलहा कोठी पहुँच गेलन। कहलन कि का बात है।

0: साहेब हमरा खोजे थली कहल गेल है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान रहिमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तन मन मुरझायल चेहरा देख के साहेब के समझित तनिको देरी न लगल कि प्रयाग बहुत दुखी हत। चेहरा देखते साहेब पूछ बैठलन, का प्रयाग सब कुछ तो ठीक है ना, तुम उदास दिखता। प्रयाग चौधरी फफक फफक के सब दुखड़ा सुना देलन। साहेब भी भावुक हो गेलन आ दांत तर कलम दबा के कहलन, तू एक वफादार और ईमानदार आदमी है, इसलिए नया गांव मौजा में 150 बीघा जमीन तुम्हें जीवन यापन के लिए मैं देता हूँ। अब का हल? प्रयाग चौधरी के मुरझायल मन गुलाब जैसन खिल गेल। तुरते रसीद भी कट गेल प्रयाग चौधरी के नाम से, आउ लगान भी सबसे कम। बेरा लुक लुक करत हल, बाकी खुशी के बेग घरे जायला उनका बेबस कैले हल। फिर वो अपन हिचली बछेड़ी पर सवार हो गेलन, गांव चलेला और गांव चल देलन। ज्यादा रात होइत देख वो अपन मामू के घर में रुक गेलन, मामू से सब बात कह सुनैलन। दूध देख के बिलाई के जैसे मन जीव दोनों चटपटाए लगे है, मामू के भी वैसे ही होए लगल ई खिस्सा कहानी सुन के। आ उ अपन भगना के आगे भीख के झोली फैलावे में तनिको देरी न कैलन। कहलन, हे भगना, तोर जानवर मवेशी के काम तो हो जाए तो ओकरा में, बाकी हमरा अगर ऊ में से कुछ हमरो दे दी तो हमरो जानवर के चारा पानी के उपाय हो जायत हल। प्रयाग आखिर प्रयाग हलन, बिना देर कैले कहलन, 25 बीघा ओमे पूरब से तूह ले लीह। सुबह सुबह जब प्रयाग घर पहुँचलन तो सब बात लोग जान गेलन। उनकर बड़का बेटा झिझकैत झुंझुआत बोललन, तोरा मिलल तो उन्हीं से प्रसादी बाँटित है। साँझ हुईते काना फूसी होए लगल, बात सब भाई तक भी पहुँच गेल जिनका से अभी अभी बाँट के ई अलगे होलन है। उ सबके मन में भी लालच के बीज जमे लगल। अभी टटके बंटवारा भेल हल, साहस उधार पैंचा बटोर के उनका पास पहुँचे के योजना बनल। प्रयाग चौधरी चद्दर तान के सुतल हलन, मोसाहेब चौधरी जा के उनकर गोरथारी बैठ गेलन। आओ कहलन, भैया अक्षका के प्रयाग चौधरी उठलन आ बोललन, के है मोसाहेब हो, ई रात के का बात है? भैया बड़ भाई आ बाप में कोई अंतर न हो है, सुन ली है नीलहा कोठी के साहेब तोरा 150 बीघा जमीन दिलथुन है, कुछ हमनिनों के उमे से दे दी तो सब के काम चल जाए। प्रयाग चौधरी एक के बोली कहलन, जे हे से सब सब के है, पहले भी सब सब के हल, आजो सब सब के है। उनकर ई उदारता देख के मोसाहेब चौधरी जे पंचायती ला मशहूर हलन कहलन, ना भैया एगो हमर प्रस्ताव है, उमे आधा तू अपना ला रख ल, आधा में सब हमने भाई में बांट द, आ ओकरा में एगो उद्यान लगा देम जेकर नाम प्रयाग उद्यान रखल जायत। ई अगर प्रस्ताव तू मंजूर कर तो हमने उमे हिस्सा लेम, अगर ये बात तोरा मंजूर न है तो हम उमे हिस्सा लेवे के कोई हकदार नहीं, काहे कि हम सब बंट गेली है। प्रयाग चौधरी कहलन, भाई बंटली हल कहियो, आज अब बंटल नहीं, सब खेत के आरी तोड़ द, सब के मिला द, आ हमने पहले भी एक हली, आजो एक हो गेली, और एक उद्यान लगा द जेकरा से जन कल्याण भी होत आ स्व कल्याण भी होत।
1: वाह, बहुत नीमन अभी हमने सब सुन रही है प्रयाग के प्रसाद कहानी पाठ। कहानी का रहते विजय कुमार, तहिनका बहुत एक धन्यवाद। श्रोता लोगिन विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस हर साल

15 जून के मनावल जाए वाला एगो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है, जे वरिष्ठ नागरिक के प्रति होवे वाला शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण के खिलाफ एगो मजबूत वैश्विक आवाज है। जीवन के अंतिम पड़ाव में व्यक्ति के सबसे ज्यादा प्रेम, सम्मान और सुरक्षित माहौल के जरूरी होवे है, मगर आय के तेजी से बदलित सामाजिक परिवेश में एकल परिवार के बढ़ल चलन, संपत्ति के लालच और पीढ़ी के बीच वैचारिक मतभेद के चलते ज्यादातर बुजुर्ग के अपन हिस्सा से ही उपेक्षा, दुर्व्यवहार के सामना करे पड़े है। ई अमानवीय व्यवहार से उ गहरा अवसाद और अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। तब बुजुर्ग के सुरक्षा के लिए खाली कानूनी प्रावधान जैसन वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के सक्रिय और नैतिक भागीदारी भी जरूरी है। संकट के स्थिति में बुजुर्ग के लिए एडल्ट लाइन, एल्डर लाइन 14567, फिर से कह दही एल्डर लाइन 14567 जैसन राष्ट्रीय हेल्पलाइन सुविधा के प्रति व्यापक जागरूकता फैलावे के चाहिए। कोई भी सभ्य समाज के सही पहचान ई बात से होब है कि उ अपना सबसे कमजोर और बुजुर्ग के नागरिक के कितना सम्मान करातिन। हमनी के ई अटल सत्य के कबहियो नहीं भूले के चाहिए कि आज जे युवा हथिन उ कल है ये अवस्था में पहुँचतिन। तो आथिन हम सब मिलके एगो संकल्प लेहिए कि हम सब अपन बड़ बुजुर्ग के अनुभव के आदर करबे और उनका एगो भय मुक्त, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण माहौल देबे। अब अपने सब सुनथिन झूमर विष्णुकांत पाठक तरुण से।

वाह, बहुत निमन। अभी हमने सब सुन रही विष्णुकांत पाठक से ये गीत। श्रोता लोग, 15 अगस्त 2020 के शुरू कैल गेल प्रोजेक्ट डॉल्फिन अपन पहला अखिल व्यापी डॉल्फिन जनसंख्या के आकलन पूरा कर ले रही है। साथ ही एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन के अलग अलग प्रजाति के रूप में मान्यता दे के ओकरा मजबूती कानूनी सुरक्षा प्रदान केलन है। ये पहल दुर्लभ इरादाबादी डॉल्फिन के संरक्षण के भी समर्थन कर है, जे भारत में विशेष रूप से चिल्का झील के लगी जानल जाए। एकर अलावे एकरा में चंबल नदी 200 किलोमीटर के डॉल्फिन के संरक्षण क्षेत्र बनावे और ओकरा डिक्लेरेंस के फॉर रिवर डॉल्फिन जैसन वैश्विक प्रयास के भागीदारी जैसे प्रस्ताव भी शामिल है। तब हमने के भी इस सब पर ध्यान देवे के चाहिए। और अपने का एगो और बात जाना थी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाए वाला एगो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है, जेकरा में जल के गुणवत्ता, पर्यावरण के प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता और स्थायी पर्यटन प्रथा है। एकरा में 33 कठोर मानदंड के भी पूरा कर है, जे भारत के बढ़ल उपलब्धि है। तो एकर महत्व और प्रतिबद्धता में ई उपलब्धि स्थायी तटीय पर्यटन, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और विश्व स्तर पर तट प्रबंधन प्रथा के प्रति भारत के बढ़ल प्रतिबद्धता के दर्शाव है। अब भाई एगो और जरूरी बात है कि देखिन, मन के शांति और भावनात्मकता के संतुलन खातिर योग और ध्यान जरूरे करथिन। हम बार बार योग से अपने सबके कहिए, तो भाई हम तो करबे करिए, अपने सब भी जरूरे करथिन। श्रोता लोगिन, आय के भाग दौड़ भरल जिंदगी में तनाव एगो आम समस्या बन गेले है। योग एगो ऐसा सहज और प्रभावी माध्यम है, जे नहीं खाली अपने के शरीर के बल्कि अपने के मन और माया के तुरंते शांत कर है। तो तनाव के दूर भगावे के लेल बालासन, श्वासन, उत्तनासन करथिन। मन के शांत करे लेल अनुलोम विलोम भ्रामणी प्राणायाम करथिन। तनाव से बचे के लेल योग निद्रा, सुबह शाम के सैर करथिन। शुरू में हमेशा बहुते सहजता से करथिन। योगासन करित खेवा अपन शरीर पर कोई दबाव नहीं डालथिन। योग के मुख्य उद्देश्य खुद के थकाना नहीं है, बल्कि खुद के ऊर्जावान और शांत बनाना है। श्रोता लोगिन, देखथिन, स्वास्थ्य और सक्रिय बुढ़ापा में योग एगो सुरक्षा कवच और ऊर्जा के स्रोत के तहत काम कर है। उम्र बढ़ना जीवन के योग एगो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मगर बढ़ल उम्र के साथ साथ शरीर और मन के स्वस्थ, लचीला और आत्मनिर्भर बनावल रखथिन, तो ई असली सक्रिय बुढ़ापा होते। योग खाली शारीरिक व्यायाम ही नहीं, बल्कि ई बढ़ल उम्र

में शारीरिक सीमा के स्वीकार करहे और गरिमा और आनंद के साथ जिए के विज्ञान है। योग बुढ़ापा के लाचारी से सशक्तता के ले जाए के एगो माध्यम है। ये वृद्धजन के आत्मनिर्भर बनाव है जेकरा से वो बिना कोई सहारे के अपन दिन भर के काम कर सकथिन और जीवन भर के आनंद ले सकथिन। तो भाई हमनी के भाई योग जरूरे करे के चाहिए और ध्यान लगावे में तो कोई परेशानी नहीं है। हमनी जहाँ ही है वहीं जैसे चाहिए तो कुर्सी पर बैठ के अपन बिस्तर पर बैठ के शांति से ध्यान लगा सके ही। ध्यान बहुत तरह से लगावल जाए, कितना लोग पालथी मार के ओम के स्वर निकाल हथिन, तो कितना लोग देखा हथिन कि हमारे भाई कौन नाक के क्षेत्र से सांस जाए थे और किन्ने से निकले थे। तो एक साथ साथ अपने सब योग करथिन, स्वस्थ रहथिन, मस्त रहथिन, बीमारी से बचल रहथिन और हमने के कार्यक्रम के समय ओरिया रहले तो अपन दिव्या के विदा देथिन। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर पटना दीघा के भाजपा विधायक संजीव चौरसिया से विशेष वार्ता 7:52 पर। इसे हम प्रसारित करेंगे अपने प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन, प्रतीक्षा करें।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि भारत के युवा लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन नियन क्षेत्रन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर रहल बाड़न। सोशल मीडिया पोस्ट में वो कहलें कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप सेंटर में गिनल जाला आ एकर सफलता में छोट शहर आ गांव के युवा लोगन के महत्वपूर्ण भूमिका बा। श्री मोदी कहलें कि पिछला 12 बरिस से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाला विकास के प्रोत्साहित कर रहल बा, जकरा से देश के युवा आबादी के आत्मविश्वास बढ़ गेल बा आ उ लोग अपन सपना के साकार कर रहल बान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के सरकार के सबसे बड़ प्राथमिकता बतौले बाड़े। पटना में आयोजित एगो कार्यक्रम में श्री चौधरी कहलन कि राज्य में निवेश के बढ़ावा देवे खातिर उद्योगन के 30 दिन के भीतर सब जरूरी मंजूरी उपलब्ध करा दिहल जाए। वो कहलन कि बिहार में 12 गो नया टाउनशिप विकसित कल जा रहल बा, जेकर तहत बड़ पैमाना पर निवेश के प्रस्ताव बा। मुख्यमंत्री कहलन कि बिजली, सड़क और दोसर बुनियादी सुविधा के विस्तार से औद्योगिक विकास के गति मिल रहल बा। मुख्यमंत्री प्रदेश के उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ कंपनी सचिव लोगन से बिहार के आर्थिक विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे के अपील भी कैलन। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बबुनी लोगिन के सशक्तिकरण के एगो बड़ अभियान बन गेल बा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछला 10 बरिस में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ के 929 हो गेल बा। ओहिजा माध्यमिक स्तर पर छात्रा लोगिन के नामांकन भी लगभग 75% से बढ़ के 80% तक पहुँच गेल बा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खातिर उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हो गेल बाड़े। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में श्री कुशवाहा के निर्वाचन के घोषणा कैल गेल। भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान आज सवेरे असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गेल। इस हादसा में 5 गो जवानन के मौत हो गेल। दुर्घटना में जान गंवावे वालन में भोजपुर जिला के कोइलवर प्रखंड के कुल्हड़िया गांव के अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल बाड़न। दानिश साल 2025 में वायुसेना में शामिल भइल रहनी। वायुसेना ये दुर्घटना पर गहरा दुख जतौले बिया। आर्थिक अपराध इकाई के टीम कुख्यात अपराधी संतोष यादव के पटना और नालंदा स्थित 25 ठिकानन पर एक साथे छापामारी कैले बिया। मिलल जानकारी के अनुसार अवैध संपत्ति और आय के सोर्स के जानकारी जुटावे खातिर ई कार्रवाई कैल गेल। छापेमारी के दौरान जमीन, वित्तीय लेनदेन, संपत्ति से जुड़ल कागजात और बेनामी संपत्ति के जांच कैल गेल। पटना में बिस्कोमान भवन के 13वां तल्ला पर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आज भिनसरे आग लग गेल। आग लगे से कई गो महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जर के खाक हो गेल। अग्निशमन दस्ता के मदद से आग पर काबू पाइल गेल। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार बतौले कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लागे के बात सामने आयल बा। वो कहलें कि पूरा जांच भइला के बादे सही कारण के पता चल सकी। प्रदेश के 19 जिला में मॉनसून पहुंच चुकल बा। मॉनसून के उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होके गुजर रहल बा। मॉनसून के प्रभाव से आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिला में मूसलाधार बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सा में बुन्नी पड़े के संभावना बा। पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार गुजरात के अहमदाबाद में

0: आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतले बारन। बेतिया पहुंचला पर सारांश कुमार के बैंड बाजा के साथे भव्य स्वागत कयल गेल। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार के 15,000 रुपया घूस लेत गिरफ्तार कर लीलस। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के बदले में घूस लेत रहल। धान खरीद में अनियमितता बरते के आरोप में बांका जिला के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज के निलंबित कर दिया गेल बा। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50,00,000 रुपया मूल्य के धान के हेरा फेरी के आरोप बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार के स्वर में फिल्म श्रीकांत से इस गीत को।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार आनंद भाई, कहाँ
1: नमस्कार उदय भाई। अच्छा
0: काल हाल चाल सब बढ़िया बा।
1: देखा उदय भाई, का कहियो जे मिला किसे पूछा कि का हाल चाल है, बढ़िया है। बढ़िया रहे तभी कहे पड़े है बढ़िया है, नहीं रहे तब कहे पड़े है बढ़िया है। फिर उसे कह दूं कि भाई हालत खराब है, तब चल जाए सुन के, कुछ पूछ भी ना करके, भाई का जरूरत है को कि तोर हालत खराब है, का चाहिए तोरा।
0: आनंद भाई, इतार आदत बढ़िया निक है कि तू कुछ बताइबे ना करा। पूछल यही से जाला कि लोग जाने के
1: बता रही थी कि
0: उत्कंठा
1: हालत
0: लोग का
1: खराब है
0: मन।
1: तो वो चल जाए कि सब है, अरे
0: एह
1: पूछो तो
0: से
1: भाई
0: एह
1: सुन
0: से
1: क्यों लो।
0: कोई जब पूछे तो जरूर बतावे के चाहिए। ये बात सही बा कि अब ऐसा ही ना रोड पर बताओ चली सब जगह बतावला से दिक्कत भी होला। दिक्कत ये होला कि कहल जाला ना कि रहिमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय। तो ये बात सही बा कि ओकरा के अपना मन में जरूर रखी, लेकिन हाँ कुछ जगह ओकरा के जरूर बतावे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: आप जैसे पेट खराब हो जाए, आप कोई से
1: हाँ, ये ना
0: बताइए।
1: कह ली कहियो ना सके भाई, बार बार लग जाए।
0: हाँ, तो पेट खराब हो जाए तो वो कोई से ना बताइए तो कैसे इलाज हुए। ऐसे आवश्यकता बा कि यदि यह तरह के कोनो भी स्थिति होके तो जरूर जे बा ओकरा के लोगों से साझा करे के चाहिए। और आज हमनी ई बात साझा करे कि यदि एह तरह से कहीं दस्त हो जाए, डायरिया हो जाए, तो कैसे जे बा अपना स्वास्थ्य के ध्यान रखें।
1: देखो डायरिया से बचने लगी डिहाइड्रेशन से भी बचना जरूरी है, कहे कि डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन ही हो गए, डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए एक में, डायरिया यानी दस्त, दस्त यानी उल्टी पैखाना।
0: हाँ।
1: तो जरूरी ये है कि पानी बढ़िया पियल जाए, साफ सफाई के ध्यान रखल जाए, और डायरिया यदि हो ही जाए तुरंत तब हो ही जाए तो तुरंत तो ओकर इलाज कर लेना चाहिए। जैसे कि ओआरएस के घोल लेना चाहिए पी ले। ओआरएस तुरंत नहीं मिले, बाजार जाए के समय नहीं है या दूर है, तो नून चीनी पानी और नींबू थोड़े सा मिल जाए तो और बढ़िया घोर के पी जा मस्त एकदम, बहुत बढ़िया ओआरएस के काम कर रहे है। और डायरिया में जरूरी भी है कि नमक चीनी और पानी के घोर के पिलावल जाए, ताकि जब पानी के जो शरीर की कमी हो जाए तो ओकरा पूर्ति हो सके।
0: आनंद भाई, बस सही बात कि सामान्य रूप से एमें पानी के ही कमी शरीर के अंदर होखे लगेला। डायरिया वह है कि जो ना में जब हम मल त्याग करी ले तो पतला पानी जैसा मल आवे लगेला, और लंबा समय तक यदि हम निगरा पर ध्यान न देनी तो ई जे बा खून में खून भी मल के साथे दिखे लगेला। तो कई कारण होला डायरिया के आनंद भाई। कभी जे बा सामान्य रूप से इन्फेक्शन हो गई पेट के अंदर, फूड पॉइजनिंग हो गई, कोनो दवाई यदि हमने के गड़बड़ खा लेनी। कई बार जे बा लोग का बर्दाश्त ना होला, बहुत लोग के कुछ खा ली तो वो जे पचाइए ना पाई। तो
1: सबसे ये चीज जो है ना खान पियन, ओकरा पर ध्यान देवे के जरूरत है।
0: हाँ
1: वरिष्ठ जो ज्यादा देर से पचे वो
0: हाँ
1: तो बिल्कुल नहीं खाए के चाहिए, खट्टा ज्यादा हो ये मतलब बासी बासी तो एकदम नहीं खाए के चाहिए, ठंडा भोजन भी करे से बचे के चाहिए, ताजा भोजन करे जो बढ़िया है। अच्छा घर में जो उपलब्ध भोजन है वो सुपाच्य भी होवे और

0: ताजा भी हो भी एकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हो भी जाए तो मरीज के सुपाच्य भोजन जैसे कि घट्ठा और मट्ठा जरूर देना चाहिए। घट्ठा माने कौन चीज? दलिया जगह आज कहा हाँ, घट्ठा होले आ मट्ठा जगह आज छाछ आदमी कहा है, ये देना चाहिए। एकरा से बढ़िया सुपाच्य भोजन और कुछ हो नहीं सके है। और खीरा ककड़ी तरबूजा लालमी तो खिलाना चाहबे करिए, ताकि ये पानी से भरपूर होबा है और साथ ही साथ शरीर के ऊर्जा भी प्रदान करा है। डायरिया के मुख्य कारण स्वच्छ पानी के अभाव है, भोजन में लापरवाही यानी बासी या गरिष्ठ माने देर से पचे वाला भोजन, जैसे कि बतेलियो भी कि तिलगर मसलगर खूब खाना खा लेला, ढेर सा मांसाहारी भोजन कर लेला, चाहे अल्कोहलिक चीज के प्रयोग भी कर लेला, तब भी हो सके है डायरिया। साफ सफाई के ध्यान नहीं देला तब भी डायरिया हो सके है। ई गुनी हमेशा साफ पानी पिए के चाहिए। संभव होवे तो आरओ के पानी या जरूरत अनुसार पानी के गर्म करके और रात के ठंडा करके अक्कर पर छान करके इस्तेमाल करे के चाहिए। खाना खाए से पहले और बाद में हाथ जरूर साबुन से या कोई भी सर्फ या हैंड वॉश से या मट्टी से ही धो लेना चाहिए। नहीं मिले तो साफ मट्टी से तो जरूर धो ले।
1: निश्चित निश्चित
0: डायरिया मुख्य रूप से पेट के संक्रमण या फूड पॉइजनिंग से हुआ है। आयुर्वेद में एकरे अतिसार कहल जाए। ये कोई भी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण भी हो सके है। डायरिया में मृत्यु भी हो जा सके है। यदि पानी की कमी शरीर में हो गई और ओआरएस यानी नून चीनी लेमू के घोल मरीज के नहीं देवल जाए तब बात गंभीर हो सके है। अब तब तो भाई जब गंभीर बात हो जाए तो कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक से जरूर परामर्श लेके दवाई लेने के चाहिए।
1: आनंद भाई, एक लक्षण भी पहचाने के चाहिए। कैसे डायरिया हो गई बा, खैर पखाना तो एक लक्षण भी बा, यदि लंबा समय तक डायरिया हो जाए। जैसे डायरिया होला दो तीन तरह के, एक तो जे कम समय के डायरिया होला लेकिन तेज होला फचाक से, तो तीव्र डायरिया ओकरा के तीव्र दस्त कहल जाला। ओकरा बाद होला लगातार दस्त, तो ऊ जे बा निरंतरता में लंबे समय तक। आ ओकरो से एगो जे लग होला वो दीर्घकालिक दस्त होला, वो 4 सप्ताह 6 सप्ताह तक, 4 से 6 सप्ताह ले चल
0: मैंने
1: सके।
0: बहुत ज्यादा हो जाए।
1: हाँ, तो ऐसे जैसे ही ये सब लक्षण दिखे कि हाँ अब यह तरह के ही भइल बा, तो तुरंत जे बा ओकरा अलावे भी कई बार होला कि जब ये सब लंबा हुई तो पेट में ऐठन सूजन हो जाला, आवेला वोमिटिंग के टेंडेंसी आवे लागेला, बार बार सोच जाए के तो उतर लागी तो होबे करी।
0: करेंगे।
1: ते से और भी लक्षण आवेला कि बुखार होखे लगी, शरीर में तेज दर्द हुई, उल्टी हुई, मल के साथे जे बा खून और बलगम आवे लगी, सर दर्द हो रहा, त्वचा जे बा लाल हो जाला, रूखा हो जाला, चिड़चिड़ापन भ्रम, चूंकि जब पानी शरीर में कम हुई तो होबे करी, गंभीर जे बा उल्टी होखे लगेला।
0: ये सब लक्षण है ना उन्हें भाई, बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता।
1: आनंद भाई बतावे के तो पड़ी, वे हम कहनी है कि जितना भी सब लक्षण यदि दिखे तो ओकरा बाद घरे बताई, घर तो बताही के पड़ी, घर के बाद जे बा वो चिकित्सक के भी बताई, और बता करके ओकरा से उचित सलाह ली, और सलाह ले करके और एकरा से
0: बिल्कुल जैसे कहल जाए ना कि खा भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। उसी जब कुछ बीमारी हो जाए तो भजन कैला से कुछ तो होवे नहीं, करे तो इलाजे पड़ते, लेकिन समय अभी ये है कि सुनल जाए एक ठो लोक भजन। कलाकार है कि अरुण मधुकर।
1: दिमागी भोजन मिली एकरा से।
0: मिलते।

0: उदय भाई की अरुण मधुकर
1: हाँ
0: बढ़िया गीत सुना रहलखी हैं, लोक भजन हल। आगे भी समय निकाल के इनका से हमने गीत सुनम लोकगीत। लेकिन देखा बात अभी जैसे कर रही हमनी मौसम के, तो आजे देखा तो दिन में खूब गर्मी हल,
1: हाँ हाँ
0: असांग होते होते बादल बोले लगल, का जाने थोड़ी देर में पनियो पड़े लगे। ये सब जो मौसम के परिवर्तन है ओकरा से अलग भले है जलवायु परिवर्तन, लेकिन मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है और अचानक से कुछ कुछ से कुछ हो जा रहा है, ओकर कारण जलवायु परिवर्तन जरूर है। तब जो मनुष्य के जीवन है इस सबसे तो प्रभावित होवे करे है।
1: निश्चित निश्चित
0: एक यह सबसे संबंधित विशेष रूप से जाने लगी एक तो वार्ता सुनल जाए। वार्ता के विषय है जलवायु परिवर्तन का मानव पर प्रभाव। वार्ताकार रखी डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा।
1: सुनेंगे।
2: ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसमें गैसें पृथ्वी को एक कंबल की तरह घेर लेती हैं और

के तापमान को इस तरह नियंत्रित करती है कि पृथ्वी जीवित प्राणियों के लिए एक अनुकूल स्थान बनी रहे। लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कोयले या पेट्रोल के बहुत अधिक उत्सर्जन और पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पृथ्वी के तापमान का असंतुलन हो गया है और तापमान में यह वृद्धि पृथ्वी पर तबाही ला रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर उच्च तीव्रता और अप्रत्याशित रूप से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा, भूस्खलन आदि होते रहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदा में 5 गुना वृद्धि हुई है और यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही है। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जाना जाने वाला ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और दूसरे अन्य फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरे विश्व भर में 55.3 गीगाटन के बराबर हुआ था। ये गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का ये एक मापने का मानक है। आप ये जानें कि इस 55.3 गीगाटन पूरे ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हुआ धरती में, इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 37.5 गीगाटन के बराबर था। यानी हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यह सबसे बड़ी समस्या है। यह उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है यह मुख्य रूप से ईंधन यानी कि कोयले, पेट्रोल और दूसरे औद्योगिक गतिविधि के उपयोग के कारण होता रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एक और दूसरा उत्सर्जन मीथेन गैस है और यह हम सभी जानते हैं कि यह नगर पालिका कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण हो रहा है। सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिस्चार्जेस के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कुल 315 बड़े मामले सामने आए थे जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित थे। इसमें सूखे के 16 मामले, अत्यधिक तापमान के 26 मामले, बाढ़ के 127 मामले, भूस्खलन के 13 मामले, तूफान के 95 मामले और जंगल की आग के 10 मामले शामिल हैं। वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की कुल संख्या पूरे विश्व भर में 68.5 मिलियन यानी 6.85 करोड़ थी और यह आंकड़ा वर्ष 2008 में घटित हुए पूरे आपदा की जो घटना थी उसकी 94% होती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही बुरी तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। कुछ गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से हम जोड़ सकते हैं। ये जो गतिविधियां हैं वो हैं खनन, औद्योगिक कचरे को छोड़ना, अयस्क को गलाना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग विशेष रूप से कोयला और पेट्रोल, प्रदूषण, बढ़ती हुई प्रदूषण, शहरीकरण, पेड़ों की अधिक कटाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का औसत सामान्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का तापमान हमें 15 डिग्री ये मेंटेन करके रखना होगा। रिपोर्ट कहती है कि औद्योगिकरण के बाद यानी 1870 के बाद से आज तक पृथ्वी के तापमान में औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। यह वृद्धि समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ाएगी और इससे कई

शहरों का जीवन नष्ट हो जाएगा। जो वैसे शहर जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं, उनका नष्ट होने का, समुद्र में समाने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अर्थ सिस्टम एंड इन्वायरमेंट नामक पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई एक महत्वपूर्ण शहर और दुनिया के अन्य स्थान जलमग्न हो सकते हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि 2030 तक समुद्र का पानी कोलकाता शहर को डुबो सकता है और 2050 तक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम जैसे शहर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कोई विराम अगर नहीं होता है तो ये सारे शहर नष्ट हो जा सकते हैं। यदि हम लोग आज की तरह ही पृथ्वी को प्रदूषित करते रहेंगे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह सकता है। आइए अब हम जानें कि कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक तीन मुख्य जलवायु परिवर्तन रोकने के उपाय बताए गए हैं, जिसे इन तीनों उपायों को विश्व समुदाय को ईमानदारी से लागू करने की आज बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। पहला उपाय जो है वो पारंपरिक समन प्रयास, कहने का अर्थ है कि जो हमारा जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे जो पारंपरिक एनर्जी के स्रोत हैं उनको उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा उपाय बताया गया है कि डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी, डीकार्बोनाइजेशन तकनीक, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और दूसरे जगहों में इसे उपयोग करने की आवश्यकता है। और दूसरे जो भी उपलब्ध तकनीक हैं उनको भी आज अपनाने की आवश्यकता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उस उत्सर्जन को कम किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही साथ आज के डेट में बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गई है जिसको कि हम ऑटोमेटिक एनर्जी स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इन सारे तकनीकों का उपयोग आज बहुत ही आवश्यक है कि हम हर क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो करें। इनमें से अधिकांश टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से स्थापित हैं और जोखिम प्रबंधन ये भी स्वीकार्य है, इसकी स्तर अच्छी है, जोखिम का भी बहुत ही कम संभावना रहता है। हम सौर ऊर्जा, औद्योगिक ऊर्जा या अन्य हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनका उपयोग नगर पालिका के कचरे को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की आज आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसे लोगों के बीच हम प्रचलित करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के नैनो कार्बन पाउडर या हीरे के आकार के कार्बन टेक्नोलॉजी में रूपांतरण का उपयोग समस्या को कम करने के लिए किया जा सकता है और यह साथ ही साथ यह उद्यमिता के अवसर को भी बढ़ावा दे सकता है। इसमें हमारे नौजवान आगे बढ़ के इस कार्य को कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में हमें भी जलवायु परिवर्तन की आपात स्थिति को समझना चाहिए और इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भोजन पकाने में कोयले या लकड़ी का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी समस्या है और एक नागरिक के रूप में हम इसे आगे कभी उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर एक बदलाव ला सकते हैं। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2022 से प्लास्टिक के पैकेट और बोतल इत्यादि के इस्तेमाल पर 100% बैन लगा दिया गया है। खुले में प्लास्टिक या कोयला जलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक नागरिक के रूप में हमें बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BPCB के प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए यदि कोई कोयला जला रहा है या हवा, पानी या मिट्टी को प्रदूषित करने वाली कोई गतिविधि चल रही हो तो इसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी

0: स्थानों पर प्रदूषण गतिविधि को जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी जारी की है। शिकायत का टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, यह है 0612226176 और ईमेल आईडी भी उपलब्ध है msbspcs-bih@gov.in। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके नाम का खुलासा नहीं करता है और वे तुरंत कार्रवाई करते हैं।
1: जलवायु परिवर्तन का मानव पर प्रभाव, वार्ता हमने सुन रही है डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा से। उपयोगी और जानकारी भरल वार्ता है। आशा है श्रोता सब के जानकारी मिलने समझ में आवल कि जलवायु परिवर्तन से मानव पर कौन कौन सी प्रभाव पड़े है और कैसे कैसे एकरा से बचल जा सके है।
2: आनंद भाई हमने के टुकड़े के महसूस कर रहे बनी है लगातार जे पर्यावरणीय असंतुलन भइल बा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट, तो वो हमने के एहसास करा रहल बा कि यदि हमने का समय रहते एकरा पर ध्यान न देने तो आवे वाला पीढ़ी खातिर बड़का समस्या और बड़हन बीमारी के रूप में सामने आई। आवश्यकता बा कि हमने का एह दिशा में खुद सोची और सचेस्ट हो जाए। आगे
1: समय हो रहा है कि फिर एक गीत सुन जाए।
2: सुने के
1: कलाकार है कि अरुण मधुकर,
2: सुन जाओ।

0: वाह पूर्वी के साथे हलखी ई अरुण मधुकर बढ़िया गीत सुनलखी। समय निकलत तो इनका से आगे गीत सुनल जाए, लेकिन अभी चौपाल के समय समाप्त हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद खेती गृहस्थी के संबंध में बात विचार किए जाते।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: उधर भाई। जब तक कि जगदीश चंद्र बसु आविष्कार कलखी, खोज नहीं कलखी और कहलखी कि पेड़ पौधा में भी जीव है, कष्ट होवे है, तब तक लगभग समूचे दुनिया यही समझे हल कि ओकरा ये सब अनुभूति नहीं होवे है। जानवर के आदमी समझे हल कि भाई चोट लगे है ओकरा तो आँख से आंसू आवे, रोवे है, या कोई कष्ट होवे, बीमारी होवे तो ओकरा लक्षण होवे। लेकिन पेड़ पौधा के बारे में ये आमतौर पर लोग समझे हलखी कि ओकरा कोई अनुभूति नहीं होवे है। जानवर के रोग बीमारी होवे है, मनुष्य नियर ओकरो दुख होवे है, लेकिन मनुष्य नियर ओकरो टीकाकरण के जरूरत पड़े है। जब ई समझल गेल तब समझ में आवल कि वास्तव में टीकाकरण से कितना लाभ है और टीकाकरण से पशु के स्वस्थ रखल जा सके है।
2: आनंद भाई,
0: पशु चूंकि मुख है, कुछ बोल नहीं सके तो समझ के पड़े तो हमनिये के
2: हमनी के समाज जे बा वो हर चीज में बड़ा पहले से, हालांकि विकासशील समाज रहल बा, लेकिन कुछ हद तक अभावग्रस्त भी रहल बा। तो मानो के अपने जे बा उ एह तरह के संसाधन के उपलब्धता ना रहे कि उह बारे में सोच पावे कि पशुधन के कैसे जे बा उनका के कैसे संरक्षित कइल जाओ, उनका के कैसे बचावल जाओ। और ऐसे इ बार बात कई बार होला कि वैज्ञानिक चेतना के भी अभाव रहे कि हाँ यदि उनका के बढ़िया से हमने का देखभाल करब तो बेहतर लाभ ले सके। ये सब चीज़ के धीरे धीरे जब चेतना के संचार भेल तो अब जे बा पशुधन के बारे में भी हमने के विचार बदलल बा। अब उनका के हमने का यह रूप में देख रहल बने कि वो सीधा तौर पर हमने के जीवन से जुड़ल बड़े लाभ, हमने के जीवन में लाभ प्रदान करे वाला जीव के रूप में बने।
0: तो कई तरह के बीमारी है, अच्छा खास करके जो पालतू पशु है उनका टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। पशुओं में टीकाकरण से पशु के गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़ी बुखार आदि से बचावल जा सके है और एकरा से उनका स्वास्थ्य और दूध उत्पादन के सुरक्षित भी रखल जा सके है, कहे कि इस सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है।
2: हाँ,
0: ये पशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के विकास करावे है। गाय और भैंस के खुरपका मुंहपका यानी FMD साल में दो बार, बरसात से पहले मई या जून में और सर्दी से पहले यानी नवंबर और दिसंबर में लगावल जाए। गलाघोटू वर्षा ऋतु होवे से पहले साल में एक बार देल जाए। लंगड़ा बुखार 6 महीना से अधिक उम्र के बछड़ा बाछी के साल में एक बार देवल जा सके है। ब्रुसलोसिस मादा बाछी जकर उम्र 4 से 8 माह के है के जीवन में केवल एक बार देना ही ठीक रहे है। भेड़ और बकरी के यदि बात की जाए तो एक में जो टीकाकरण हो है यानी PPR पेमसिना के उम्र में 4 महीना के उम्र में पहला टीका और पुनः 3 वर्ष बाद देल जा सके है। FMD और HS यानी खुरपका मुंहपका अगल घोंटू के टीका गाय भैंस नियन मानसून से पहले गाय बकरी के भी दे देवे के चाहिए। गोट पॉक्स यानी चेचक के मामला में 4 से 5 महीना के उम्र तक में टीका के दे

देवे के चाही। ई जरूर ध्यान रखे के चाही कि टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु के ही कराना चाही, बीमार पशु के नहीं। बीमार पशु के तो इलाज कराना चाहिए। वैक्सीन लगावे से पहले 10 से 15 दिन पहले पशु के पेट के कीड़ा मारे के दवा अवश्य दे देवे के चाहिए, ताकि टीकाकरण पूरा पूरा असर करे। गर्भावस्था के अंतिम महीना में गाय के मामला में, नौवां और भैंस के मामला में, दसवां महीना में, या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत सर्दी होला पर टीका

0: में नहुआ और भैंस के मामला में 10वां महीना में या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत सर्दी होला पर टीकाकरण नहीं करवावे के चाही। बियाए के 10 से 15 दिन बाद टीकाकरण करवावल जा सके है, चूँकि पशुपालन हमनी के देश में कृषि से जुड़ल व्यवसाय है। ई गुनी ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन बहुत सा किसान और बेरोजगार के आजीविका के एगो साधन बन गेले है। पशु के देखभाल और खान पान ठीक से ध्यान रखल ई व्यवसाय के लाभदायक बनावे लगी बड़ी जरूरी है। पशु में समय समय पर विभिन्न बीमारी भी हो जाए, ई गुनी पशु के विभिन्न प्रकार के बीमारी से बचावे लगी टीकाकरण बड़ी जरूरी है।
1: आनंद भाई देखो, टीकाकरण काहे जरूरी बा? टीकाकरण से जौन भी पशु बा ओकरा अंदर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित
0: विकसित हो
1: होला,
0: जाए।
1: और वो इम्यूनिटी जे बा उनका की ताकत देवला कि ओह बीमारी से संबंधित कोनो संक्रमण हो तो ओकरा से वो प्रतिरोध के साथ उसका सामना कर सकस, और ऐसे बचाव होला। सामूहिक रूप से भी यदि टीकाकरण सामूहिक रूप से होता तो ई जे बा पूरा एक कम्युनिटी के स्तर पर एकरा से हमनी का रोग प्रतिरोधन होला, तो आवश्यकता बा कि एकरा के हमनी का जरूर करे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब समय है कि एक आटोप के गीत सुनल जाए।
1: हाँ
0: कलाकार है कि अरुण मधुकर, सुन
1: सुने
0: लीजिए
1: के
0: उनका सही गीत।

0: बा इलखी अरुण मधुकर
1: हाँ
0: समय निकाल के इनका सजाओ गीत सुनल जाए। बात थोड़े सा जांच परीक्षा के,
1: अच्छा
0: मट्टी के जांच परीक्षा के, डर मत, मान परीक्षा के नाम से भाई सब के कान खड़ा हो जाए, कौन परीक्षा है।
1: आनंद भाई, परीक्षा ऐसा चीजें हो कि पढ़ आ इच्छा।
0: परीक्षा दूसरा की
1: हाँ
0: इच्छा।
1: हाँ तो दूसरा के सामने जब उखड़ा इच्छा से प्रस्तुत होके के बा तो तनी तो भयावह होइबे करी है, लेकिन जीवन में दूसरा के सामने ही अपना के साबित कैल इहे जे बा सार्थकता है जीवन के, और यही से आदमी निखरे ला भी,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ई आवश्यक भी बा, लेकिन हाँ थोड़ा तो संकोच होइए जल।
0: चला अभय प्रदान करेगा तो हम बात कर लिए मिट्टी के परीक्षण के। सुनल जाए एक ठो वार्ता इहे से संबंधित, मृदा परीक्षण के लाभ। वार्ताकार है कि डॉक्टर निशा कुमारी।
1: सुने के
2: आज बहुत सारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लाभ से अनजान है, तो चलिए जानते हैं इसके महत्व और तकनीक के बारे में। हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, यहाँ आज भी करीब 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है। किसान अपनी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपको बता दें कि पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वमान्य रूप से 16 पोषक तत्व तो आवश्यक पाए गए हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पोषक तत्व तो पौधे प्राय वायु या पानी से प्राप्त करते हैं, तथा शेष 13 पोषक तत्व तो जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर पौधे भूमि पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, परंतु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों का ह्रास निरंतर हो रहा है। असंतुलित पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती, तथा पौधों के कमजोर होने एवं रोग व्याधि कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे हैं, अतः इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकता अनुरूप ही उपयोग करना, जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, अतः मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु नितांत आवश्यक है। किसान को खेत का उपजाऊ मिट्टी का सही अंदाजा लगाना जरूरी है, ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। इसके लिए खेती की मिट्टी का परीक्षण करना अति आवश्यक है। किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि खेत में कौन कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालनी है। चलिए अब जानते हैं मिट्टी परीक्षण से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। किसान भाइयों को फसल उगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए, इससे भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों और लवणों की मात्रा था उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या का पता लगता है, जिससे जैविक शक्ति और पोषक स्तर तथा पीएच के बारे में भी जाना जा सकता है। जो फसल भूमि की भौतिक इससे इसके साथ ही भूमि की भौतिक बनावट भी मालूम पड़ती है। जो फसल बोना है उसमें खादों की कितनी मात्रा डालनी है इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा भूमि में सहायक रसायन की जरूरत है या नहीं इसका पता चलता है, जैसे जिप्सम, फॉस्फो जिप्सम या पायराइट्स और अम्लीय आदि। मिट्टी की जांच के माध्यम से फसल के सूक्ष्म पोषक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। यह एक उपयोगी पोषक तत्वों के समुचित प्रबंधन में सहायक है। मृदा परीक्षण से उर्वरक की सटीक मात्रा को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की विषाक्तता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के माध्यम से फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को वैज्ञानिक रूप से किया जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि मिट्टी की जांच करना खेत की जरूरत है। तो अब चलिए मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने का सही समय क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों को मिट्टी का

फसल बुवाई बुवाई और रोपाई के एक महीने पहले करना चाहिए, तो वही सघन खेती करने के लिए मिट्टी का परीक्षण हर साल होना चाहिए। इसके अलावा जिस खेत में साल में एक फसल उगाई जाती है, उस खेत में 2 या 3 साल में एक बार मिट्टी का परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने के नमूने नमूने कैसे लिए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए पहली आवश्यक बात है खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेना। न केवल अलग अलग खेतों की मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है, बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। परीक्षण के लिए खेत में मृदा का नमूना सही होना चाहिए। इसके लिए मृदा का गलत नमूना होने से परिणाम भी गलत मिलेंगे, तथा खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी के ध्यान योग्य बात है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। नमूना लेने के उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं। फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करना, तथा ऊसर एवं अम्लिक भूमि के सुधार तथा उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए हम मृदा परीक्षण करते हैं। बाग व पेड़ लगान भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए भी हम मृदा परीक्षण करते हैं। मृदा परीक्षण से हम उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिए कर सकते हैं। यह मानचित्र विभिन्न फसल उत्पादन योजना निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरक संबंधी जानकारी देता है। अब जानते हैं मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने की विधि। किसान भाई को नमूना लेने के लिए खेत में मिट्टी परीक्षण के सबसे पहले जिस खेत का नमूना लेना हो वहाँ 8-10 जगह निशान लगा देना चाहिए, और उस स्थान से घास फूस कंकर पत्थर हटा देना चाहिए। अब फावड़े या खुरपी से भी आकार का करीब 15 सेंटीमीटर गहराई तक गड्ढा खोद कर मिट्टी अलग कर देना चाहिए। इसके बाद दीवार के साथ पूरी गहराई तक मिट्टी की परत काट कर निकाल ले। ऐसे ही खेत के बाकी स्थानों से भी मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। अब सभी नमूनों को किसी साफ कपड़े या फिर पॉलिथीन पर अच्छी तरह मिला ले, जिस नमूने को एक वर्गाकार या गोलाई में फैलाकर 4 भागों में बांट ले, और आमने सामने के 2 भागों को रख कर बाकी फेंक दे। जब तक मिट्टी का कुल नमूना करीब 500 ग्राम ना रह जाए, तब तक इस प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के नमूने को लेकर एक साफ थैली में रखें और अपनी जानकारी लिखकर नजदीक के प्रयोगशाला में भेज दें। मिट्टी का नमूना लेते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे किसान भाइयों को खेत से नमूना लेने वक्त कई विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दे कि उन स्थानों से नमूना ला ले जहाँ जहाँ पर खाद, उर्वरक, चूना, जिप्सम या फिर अन्य कोई भूमि सुधारक रसायन तत्काल लगाया गया हो। इसके अलावा ऊसर आदि की समस्या से ग्रस्त खेत या उसके किसी भाग से नमूना नहीं लेना चाहिए, तो उस स्थान से अलग से नमूना ले। ध्यान रहे गीली मिट्टी का नमूना ना ले। अगर किसी वजह से गीली मिट्टी है तो उसको छाया में सुखाने के बाद ही परीक्षण के लिए भेजें। साथ ही मिट्टी के नमूनों को खाद के बोरों, ट्रैक्टर की बैटरी आदि से दूर रखना चाहिए। मिट्टी परीक्षण दोबारा कितने समय के अंतराल पर कराए? किसान भाई को मैं बताऊंगी कि कम से कम 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। हल्की या नुकसानदेह भूमि की मृदा का परीक्षण अधिक आवश्यकता है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। नमूना एकत्रीकरण करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खुरपी, फावड़ा, बाल्टी या ट्रे, कपड़े या प्लास्टिक की थैलियाँ, पेन, धागा, सूचना पत्र आकार आदि आदि किसान के पास होना चाहिए। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नमूना एकत्रीकरण की विधि भी है, जैसे लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद कर एक तरफ से सपाट कर ले, फिर वहां से ऊपर से नीचे की ओर 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर तथा 30 से 60 सेंटीमीटर की परत से आधा आधा किलो मिट्टी खुरच कर अलग अलग थैलियों में रख लेना चाहिए।
वह परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्रक में स्थान

0: का भूजल स्तर, सिंचाई का स्रोत आदि जानकारी भी लिखकर मिट्टी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देना चाहिए। फलदार पौधे लगने के लिए 2 मीटर तक नमूना लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बरवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2 मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15 से 30 तथा 180 सेंटीमीटर गहराई पर निशान बनाकर अलग अलग परतों से अलग अलग मिट्टी नमूना एकत्र कर लेना चाहिए। सूचना पत्रक में अन्य जानकारी के साथ परतों की गहराई भी लिखना चाहिए। इस प्रकार के नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए।
1: अभी हमने सुन लिया वार्ता मृदा परीक्षण के लाभ। वार्ताकार रखी डॉक्टर निशा कुमारी। जानकारी भर लेकिन मन हमारा कर रहे भाई पहले कठो गीत सुने के
2: सुन लिया।
1: कलाकार रखी अरुण मधुकर
2: सुने के।

0: मैया में साड़ी।
1: अरुण मधुकर जी डले हैं झूमर सुनावत, धन्यवाद दिया हुए हैं के
2: बिल्कुल।
1: और अब अपना कार्यक्रम के समय संपन्न हो रहा बा चले के।
2: नमस्कार उदय भाई।
1: नमस्ते आनंद भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल के तहत खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिहार में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास की महत्वपूर्ण शर्त बताते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने गंगा तट क्षेत्र के समग्र विकास, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक पहचान के पुनर्स्थापन और राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
1: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। बाद में अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश अपने पूरे कार्यकाल तक मंत्री बने रहेंगे।
2: एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद का शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली, उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए।
0: एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार कंगाल होने के कगार पर है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में

0: सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।
1: डबल इंजन सरकार है, ऐसे यहाँ पैसा की कमी नहीं है, पैसा सब आ रहा है। जब डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी को यानी बिहार सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
2: लोकतंत्र में बातों को रखना चाहिए, जानकारी भी लेना सही चाहिए। बयान देना एक अलग चीज है, कोई भी बयान दे सकता है जाकर। सच्चाई यह है कि आज बिहार में समय पर अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार में तेज रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में खुशहाली है, शांति है, कानून का राज है, बिहार का विकास हो रहा है, सबको को पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है और डेवलपमेंट का काम भी जारी है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है।
3: खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं करें, सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, एक दिन में 1100 रुपए प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा और सारी योजनाएं जो लोकहित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर के अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल हैं। 22 वर्षीय दानिश वर्ष 2025 में वायुसेना में शामिल हुए थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर

0: हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार में 3,14,000 दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज की गई है। नव नालंदा महाविहार के कुलपति तथा मिशन के बिहार क्लस्टर निदेशक प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि इनमें से कई पांडुलिपियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। उन्होंने बताया कि 15,000 से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुख्यात अपराधी संतोष यादव के पटना और नालंदा स्थित 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हथियार तस्करी, अवैध संपत्तियों और आय के स्रोतों की जानकारी जुटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान जमीन, वित्तीय लेनदेन, संपत्ति से जुड़े कागजात और बेनामी संपत्ति की जाँच की गयी। पटना के बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। आग लगने के कारण कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
2: आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था, बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां थी।
0: कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जुराबगंज के पास NH 31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर किया गया है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा से पुलिस ने 419 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गांजा की तस्करी में डायल 112 के चालक की संलिप्तता पाई गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 10.5 किलो अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के एवज में घूस ले रहा था। धान खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप में बांका जिले के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50,00,000 रुपए मूल्य की धान की हेराफेरी का आरोप है। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले के मदारीपुर गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर उनका बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत।

0: और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
2: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
1: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
2: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
1: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
7: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
8: राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई वर्षों के बाद इस बार जिले में मॉनसून समय पर पहुंचा है। मॉनसून के आगमन के साथ ही कृषि कार्यों में तेजी आ गई है और किसान बड़े उत्साह के साथ खेतों में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि यह समय धान के बिचड़े डालने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। समय पर हुई बारिश ने खेतों में नमी बढ़ा दी है, जिससे धान के बिचड़े डालने की तैयारी को गति मिली है। भारत सरकार द्वारा भोजपुर के ननौर गांव निवासी भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर जिलेवासियों में हर्ष का माहौल है। लोगों ने भोजपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कलाकार को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। शाहाबाद की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और गुरुजी तथा साजा बाबा के नाम से प्रसिद्ध लोक गायक भरत सिंह भारती ने पद्मश्री सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने भोजपुरी भाषा, लोक गीतों और सांस्कृतिक मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने युवाओं से अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भोजपुर जिले में इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों की सराहना की है। लोगों का मानना है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सरकार भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य कर रही है। असम के जोरहाट में हुए विमान हादसे में वायु अग्निवीर 22 वर्षीय दानिश आलम की मौत हो गई। दानिश भोजपुर जिला के कोइलर थाना अंतर्गत कायम नगर के रहने वाले थे और अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे। हादसे में उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है और लोग सांत्वना देने पहुँच रहे हैं। भोजपुर जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गृह विभाग कारा तथा परिवहन विभाग में सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए 14 जून और 17 जून को दो दो पालियों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला

0: पदाधिकारी डॉक्टर मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि प्रत्येक पाली में 11,424 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन की निगरानी के लिए वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को परीक्षा संयोजक, नोडल पदाधिकारी और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिले के राजापुर पंचायत में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। उनके साथ बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और कृषि सहित विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए। ग्रामीणों ने सीधे अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन गांव गांव तक पहुंचे। इधर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन के डिजिटाइजेशन तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% निष्पादन के निर्देश दिए। बीते दिनों बिहिया में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता द्वारा बाढ़, सुखाड़ और हीट वेव जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को पूरी तरह अद्यतन और सक्रिय रखें। अपर समाहर्ता ने विशेष रूप से राहत सामग्री, नावों की उपलब्धता तथा मेडिकल किट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के बाद उन्होंने बिहियां अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। भोजपुर जिले के विभिन्न अनुमंडलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया गया है। इस अभियान के तहत प्रशासन की टीम द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान जहां जहां अतिक्रमण पाया जा रहा है, वहां तत्काल प्रभाव से उसे हटाकर मार्गों को खाली कराया जा रहा है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। इस चर्चा का विषय है विकसित भारत की ओर बिहार के बढ़ते कदम। इसमें भाग ले रहे हैं भाजपा से विधायक संजीव चौरसिया, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निधिश्री और संवाददाता आशीष रंजन।
3: नमस्कार, आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है विशेष चर्चा। चर्चा में मैं हूं आपके साथ निधिश्री। आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के 12 वर्षों के कार्यकाल पर, और आज का विषय है विकसित भारत की ओर बिहार के बढ़ते कदम। और इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, और साथ में हमारे आकाशवाणी के संवाददाता आशीष जी भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है आकाशवाणी में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: शुरुआत करूंगी मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, और बीते 12 वर्षों में बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो गरीब परिवारों के जीवन पर इस योजना का क्या असर देखने को मिला है?
4: निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी योजना थी उसका लाभ सभी स्तर पर दिखाई दिया है, और विशेष करके बिहार में, क्योंकि बिहार में जब चर्चा करते हैं तो पहले की योजना का लाभ और बात का उसमें हमें ध्यान में आती है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2005 के जो कार्यकाल अलग अलग प्रकार से आरजेडी का समय जो रहे हैं और एनडीए के कार्यकाल में जब हुए हैं, तो मुफ्त राशन के गरीब कल्याण की जब बात करेंगे तो लगभग लगभग नगन अवस्था में थी, पर वर्तमान में अगर इसके आंकड़े को देखेंगे तो लगभग 8.71 करोड़ के इस कार्यकाल में मुफ्त राशन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था उसी गरीब कल्याण के अंतर्गत देखेंगे जो 4 लाख आयुष्मान योजना के तहत लाभ जो मिलता है जो पहले भी

0: अवस्था में थी। इधर तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना से भी लाभ बिहार को मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण जो योजनाओं का लाभ, इसका सीधा सीधे अगर श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, और उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस दूरगामी सोच के लिए, जिसमें बिहार अलग अलग प्रकार से जो पिछड़ा हुआ प्रदेश था, तो इस योजना से लाभ बिहार को काफी मिला है।
1: बीते 12 वर्षों के कार्यकाल की अगर बातचीत करें तो सरकार ये दावा करती है कि इन सालों में किसानों की आय दोगुनी हमने की है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप?
0: किसानों की आय के दृष्टि से अगर जब बात करेंगे तो उसके बहुत सारे अपने प्रकार हैं। अगर पहले किसान के दृष्टि से बहुत प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किसान की योजनाओं के जो अलग अलग प्रकार से विषय निकले हैं किसानों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि जो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का काम होता है, चाहे यूरिया के अंतर्गत जो नीम कोटेड यूरिया है उसके विषय में, कृषि अवसंरचना में निवेश की जब बात करेंगे तो उसका लाभ मिला है, तो किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार भी हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से किसानों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ और विशेष करके इसका लाभ बिहार को मिला है, तो बिहार इस दृष्टि से बहुत ही भाग्यशाली रहा कि इन योजनाओं का लाभ मिला है, तो स्वाभाविक रूप से जो आय है, जो आमदनी है, उसके प्रकार से वृद्धि तो हुए हैं। जैसे आप आरजेडी के समय के जब विकास दर देखेंगे तो 2.9% था और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 8.64% है, तो इससे स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं कि विकास के दर तो बढ़े ही हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े हैं, क्योंकि बिहार किसान संबंधित ज्यादा है, तो जो पहले 8,000 रुपये व्यक्ति का आय था, तो इसी से आकलन कर सकते हैं कि हम 66,000 रुपये के हम प्रति व्यक्ति आय पर बढ़े हैं। तो हर चीज का कैलकुलेशन का माध्यम इससे करेंगे तो स्वाभाविक रूप से किसानों के आय का वृद्धि और समृद्धि बढ़ने का काम हुआ है।
1: एक योजना है फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं की मार जो किसान झेलते आए हैं उनको क्या राहत मिली है?
0: फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बहुत सारे लाभ किसानों के अलग अलग प्रकार से मिले हैं, जब इसके दृष्टिकोण से जाएंगे तो केंद्र में फसल से संबंधित जिन जिन चीजों की बीमा के भी योजना सरकार के पास नहीं थी, हमें याद है कि जब हम सरकार के पास गए थे, विशेष करके पान के मत्स्य पे हो या और भी जो विषय हुए हैं, तो दलहन की बात हो, तो सब प्रकार से सरकार ने अपने अपने प्रकार से जो व्यवस्थाएं दी हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक पहलू की ओर तय किए हैं और फसल किसान फसल बीमा के तहत बहुत सारे विषय पर हम आगे बढ़ाने का काम किए हैं।
1: मुझे लगता है कुछ सवाल आशीष जी के पास भी हैं, मैं चाहूंगी कि वो पूछे।
2: देश में पिछले 12 वर्षों में डिजिटल क्रांति काफी हुई है और इसमें जो है खासकर UPI जो है वह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति जब यहाँ आए थे भारत दौरे पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने अपने मोबाइल फोन से खुद डिजिटल पेमेंट किया था। तो आपको क्या लगता है कि गांव-गांव गलियों में जो खासकर जो ठेले खोमचे वाले हैं वह भी UPI से पेमेंट ले रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी क्रांति जो है वह भारत में हुई है?
0: आज भारत में UPI के माध्यम से जो पेमेंट हो रहे हैं तो उसका लाभ तो मिला ही है भारतीयों को, पर इस दृष्टि से भारतीय बहुत बड़े पायदान पर पहुंचने का काम किए हैं। UPI के भुगतान की व्यवस्था में तो क्रांति लाई है, डिजिटल सेवाओं में इसके माध्यम से भ्रष्टाचार की भी कमी आई है, और DBT के माध्यम से ये सबसे बड़ा तंत्र है कि DBT के माध्यम से जो डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो सोच हुआ है उसके तहत एक बड़ी क्रांति आई है। जो भी योजनाओं में बीच के दलाल जो खा जाते थे वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका, और सीधा वो किसान से संबंधित हो या आवास से संबंधित हो, जो भी योजनाओं का लाभ है DBT के माध्यम से नीचे पहुंचता है, और सरकारी योजनाओं का डिजिटलीकरण पूरी तरह से हुआ है। पहले हम याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बैंक खाता खोलने की बात की तो उस समय लोगों को लगा कि भाई जीरो बैलेंस में कैसे बैंक खुलेगा, पर बैंक खाता खोलने के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी आवाज ये बनी और उस दृष्टि से बहुत सारा लाभ अपने को मिला। तो हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर भी प्रहार इसके वजह से किया और डीबीटी के माध्यम से तो किया ही है, और डिजिटल पेमेंट जो हुआ है, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप कहीं भी जाएंगे, छोटे छोटे खोचा वाले, आप नारियल बेचने वाले, पानी बेचने वाले, किसी के पास जाएंगे तो डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट आप यूपीआई

0: के माध्यम से आप तुरंत पे कर सकते हैं। तो इस कारण से सरलीकरण भी हुआ है और एक नई क्रांति की ओर भारत आगे बढ़ रहा है।
1: पटना में मेट्रो परियोजना की शुरुआत हुई, तो बिहार के शहरी विकास की दिशा में ये जो परियोजना है ये कितना महत्वपूर्ण कदम समझा जाए?
0: बिहार में शहर के विकास के लिए जो पहले पैमाना पैरामीटर्स जो नहीं के बराबर था कि कैसे विकास करना है, तो विकास का मतलब केवल कॉन्क्रीट का विकास नहीं होता है, विकास का मतलब एक होलिस्टिक व्यू के साथ हम कैसे विकास करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस से आपको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, डेवलपमेंट के प्रोसेस से आपको ड्रेनेज का भी ध्यान रखना है, डेवलपमेंट के प्रोसेस से आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल भी ध्यान रखना है। तो इधर के दिनों में एनडीए की जब से सरकार बनी है, आप पटना का ही देख लीजिए, पटना का विशेष करके मैं तो दीघा का बात कह सकता हूं कि दीघा में जिस प्रकार से प्लान तरीके से, पहले प्लान नहीं हैपजर्ड तरीके से विकास होता था, तो प्लान तरीके से जो विकास हो रहे हैं आपके पटना से लेकर भागलपुर हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, कहीं भी हो, वट एवर जो भी शहरों की संरचना रही है उसके बारे में विचार भी हो रहा है। इसलिए विचार हो रहा है कि सभी की व्यवस्था भी रखना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, खमचा वाला है, तो उन लोगों के लिए वेंडर जोन्स की बात, उसकी भी जरूरत है। गरीबों के लिए है, स्लम की नीति है, स्लम की नीति भी हम लोगों ने लाया। शहर में गरीबों के रहने का भी हक, गरीबों के रहने का भी हक उसी प्रकार से है, तो उनके लिए स्लम नीति लाए हैं कि किस प्रकार से सरकार उस स्लम नीति को फॉलोअप करते हुए आगे बढ़ाने का काम करे। और भी प्रकार के हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, तो स्वाभाविक रूप से अभी नई योजना के तहत देख रहे हैं कि किस प्रकार से सैटेलाइट टाउन को विकसित किया जा सकता है। तो सरकार इस दिशा में बहुत ही अच्छे कदम उठा रहे हैं, आने वाला समय में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। और आप जहां भी जाएंगे बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों का अपने विकास के क्रम जारी है, तो उस विकास के क्रम में ड्रेनेज का भी सिस्टम, हम तो याद है कि राजीव नगर का नाला है, बाबा चक का नाला है, जो ओपन ड्रेन थे बड़े बड़े, आपका मंदिरी नाला का है, चाहे सैदपुर नाला का है, सभी प्रकार से सरकार इसमें योजना बनाते समय यह ध्यान रखिए। और यह सब नाला पटने का भी काम हो रहा है ताकि ट्रैफिक को भी ठीक किया जा सके और ड्रेनेज प्रॉब्लम को भी ठीक किया जा सके।
2: हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात की, साथ साथ पिछले 12 वर्षों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहरों का भी विकास हो रहा है, जिसमें अध्यात्म से जुड़े कई जो जगह हैं उन्हें विकसित किए जा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत कई जगहों को विकसित किया गया है, तो क्या लगता है आपको यह सरकार ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है पिछले 12 वर्ष?
0: मैं तो महाशिवरात्रि बहुत बड़ा कार्यक्रम करता हूं और इधर उससे भी जुड़ा हूं, रामनवमी समिति से भी, तो बहुत प्रकार की जो सरकार की जो मदद मिलते हैं तो उससे लाभ बहुत मिलता भी है। तो स्वाभाविक रूप से दोनों विषय का जवाब देना चाहूंगा कि जो विरासत और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री ने जिन विषयों को आगे बढ़ाया, अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और वर्तमान माननीय सम्राट चौधरी जी, तो ये बिहार के विकास के लिए, विरासत को बढ़ाने के लिए काम किए हैं। मैं जब रिपब्लिक 50 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री जब थे, तो एक कमेटी में जब था, तो हमने भी उस समय विषय उठाया था कि जैसे कि लिच्छवी गणराज्य का वैशाली सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक ये रहा है, तो वहां भी सेमिनार सिंपोजियम सब करवाने का काम किए, प्रारंभ किए हैं। मगध के उन्नयन के दृष्टि से भी बहुत सारा काम हमने किया है, तो इस चीज को हमने देखा कि मगध के विकास के लिए, मगध में जो जिन चीजों के पैमाने रहे हैं उसको भी आगे बढ़ाने का काम लगातार एनडीए की सरकार ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विरासत के दृष्टि से पूरे देश के स्तर पर एक तो सनातन संस्कृति के भी विकास के लिए और अलग अलग प्रकार के मंदिरों के मठ के लिए, आज ये विरासत के दृष्टि से जो बड़े बड़े वैज्ञानिक का आधार रहे हैं, आप देखेंगे तो भारत बहुत बड़ा सांस्कृतिक आधार रहा है, पर इन सब चीजों को हम विलोपित करते गए। आज शिक्षा नीति के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आभास इस चीज को है कि भारतीय संस्कृति जहां जहां बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था देने का काम किए हैं। आज वाराणसी सबसे बड़ा केंद्र है निश्चित तौर पर, दक्षिण के देखेंगे तो दक्षिण के दृष्टि से भी रामेश्वरम से लेकर सब बड़े बड़े मंदिर है, आज अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी, सभी प्रकार के मंदिरों का पुनर्जागरण, तो एक सांस्कृतिक धरोहर का भी जागरण है। और जो ऐतिहासिक पहलू पर जहां जहां धूले की परत जम चुकी थी, उन परतों को हटाने का काम हो रहा है ताकि अपने विरासत पर लोगों को गर्व करने का भी काम हो। अब बिहार भी टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारा बढ़ावा मिला है और बहुत सारे मेले के आगे बढ़ाने के लिए, मलमास से लेकर ऐसे बहुत सारे मेले जो है जो बिहार सरकार उन योजनाओं के माध्यम से

मदद करने का भी काम करती है ताकि वहां सुविधाओं मिल पाए। आप अगर आप जब सावन के समय कांवर उठाकर जब जाते हैं बाबा भोलेनाथ का, तो कांवरिया पथ का निर्माण से लेकर जो भी काम हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है। आस्था के साथ जो व्यवस्था सरकार ने अपनाने का काम किया है, जहां आस्था है वहीं व्यवस्था है, तो इन क्रम को बहुत क्रमशः आगे बढ़ाने का काम किया है और धीरे धीरे वो एक बड़े पैमाने में एक बड़ा स्वरूप ले लिया है। तो स्वाभाविक रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसका दृष्टिकोण

0: आपको इसमें बिहार को लेकर क्या संभावनाएं दिखती हैं, और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें बिहार की क्या भूमिका रहेगी?
1: बिहार अपनी भूमिका को सदैव निहारती रही है, ऐसा नहीं है, तलाशती भी रही है और आगे बढ़ती भी रही है। जैसे कि बजट का आकार के लिए जो पहले लगभग 23,885 करोड़ मात्र था, अब 3,17,000 करोड़ है। तो इसी बात को स्थापित करता है कि हम बिहार को किस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली के उत्पादन जो कम थे उसको लगभग 700 मेगावाट थे, अब लगभग 6,500 मेगावाट हो गए हैं। सरकारी नौकरियां जहाँ 95,000 मात्र थी, 18 लाख हो गए हैं। जहाँ विधवा पेंशन 300 रुपये थी, अब 1,100 रुपये हो गए हैं। महिला आरक्षण नौकरियों की दृष्टि से जहाँ नहीं के बराबर थे, वहाँ 35% हो गए। महिला आरक्षण निकाय के अंतर्गत जो हुआ है वहाँ अभी 50% देने का काम किए हैं। जहाँ सड़कों के निर्माण 835 किलोमीटर मात्र पहले था, पर अब 1,18 लाख किलोमीटर हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3,537 थे तो लगभग 6,150 हो गए हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आंकड़े कि बिहार के लक्ष्य के प्रकार सत्ता में रहने के लिए दूसरे प्रकार था। जब एनडीए की सरकार बनी है और माननीय केंद्र के सरकार के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, बहुत चीजों को विकसित भारत के यानी कि एक योग्यता की दृष्टि से भी बिहार आगे बढ़े। चूंकि बिहार के ऐतिहासिक धरोहर, बिहार के आगे बढ़ने की क्षमता, साथ ही साथ उन लोगों की ममता, उन लोग के शैक्षणिक योग्यता, सभी जगह पर बिहार आगे बढ़ने का काम किया है। और अपने पुराने इतिहास को बिहार अगर दोहराने का काम करेगा तो शैक्षिक दृष्टि से भी वैश्विक पटल पर जो बिहार की पहचान रही है वो धीरे धीरे फिर से स्थापित होने का काम हो रहा
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन 12 वर्षों में सरकार की जो विकासात्मक कार्य रहे उस पर हमने चर्चा की यहाँ, और आपने समय निकालकर श्रोताओं के साथ विचार और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। खास करके हम BCA BBA की बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ी बहुत बात करेंगे MCA MBA और BEd की भी। हाँ, ढेर सारी बातें होंगी, अभी ये सिलसिला चलेगा। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं पिछले 27 वर्षों से आप युवाओं के साथ खड़ा जो संस्थान है BCA और BBA को लेकर, आर्केड बिजनेस कॉलेज। जी हाँ, आर्केड बिजनेस कॉलेज जो कि आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। और आपको बताएं कि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: इसलिए BCA और BBA अगर जो आपको करना होना, तो नंबर डायल कर सकते हैं 7520800800। जी हाँ, यानी 7520800800। आज हमारे साथ हैं, हाँ, इस आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर संस्थापक आशीष आदर्श जी, जो करियर काउंसलर भी हैं। ढेर सारी बातें आज इनसे करेंगे कि BCA BBA या MCA BEd MBA, हाँ, आर्केड ग्रुप के ये जो कॉलेजेस हैं ना, ये जो आर्य कुमार रोड, सगुना मोड़ और ABC, हाँ, भी कॉलेज है नेवरा में, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है इनका आज के उड़ान कार्यक्रम में। आशीष जी, एक बात बताइए, 27 वर्षों से आप इस संस्थान को चला रहे हैं, जी हाँ, BCA और BBA को लेकर, हाँ, क्या सोचा था, कैसा लगता है, या सीधे सीधे अपना अनुभव बताइए।
3: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारा संस्थान पहला संस्थान है बिहार का जिसने वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज बिहार में शुरू किया। BCA और BBA जैसे कोर्सेज को कोई नहीं जानता था उसके पहले। बात 1998 की है, उस समय में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और ला करके पहला संस्थान बना ये बिहार का जिसने BCA और BBA जैसे संस्थान पाठ्यक्रम शुरू किए। पहले हमारा संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड था, संबद्ध था। बाद में 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एक नई बनी और मगध विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज थे जो पटना के, वो सब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए और हम भी उसी में हैं। और आपको मैं बता दूं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार का यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से BCA BBA पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। आपने कई बार देखा होगा, कई कॉलेजेस हैं पटना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां आए दिन हल्ला हंगामा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब बातों को लेकर के एक आर्केड बिजनेस कॉलेज की एक अलग पहचान है, एक अलग विश्वसनीयता है और बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 10,000 से अधिक स्टूडेंट, सफल स्टूडेंट्स।
0: बहुत खूब आशीष जी, ये बहुत बड़ी बात है। 27 वर्षों से BCA और BBA को लेकर आप युवाओं के बीच में हैं और 10,000 से ज्यादा जो BCA और BBA कर लिए युवा हैं आज रोजगार में हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज और उसी गुणवत्ता के साथ आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पर बना हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उस जमाने में, आज तो कहा जाता है टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और रोजगार के लिए सुनिश्चित हो जाइए, लेकिन उस जमाने में क्या दूरदर्शिता दिखाई आपने? एक बात हमें बताइए कि बिहार के किस जिले से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, उनमें टेक्निकल पढ़ाई BCA और BBA पढ़ने की ललक ज्यादा होती है?
3: पूरे बिहार से हमारे यहाँ, आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ पिछले साल का अगर हम ब्यौरा अगर बताएं, तो पिछले साल लगभग 1100 एडमिशन्स हुए थे। उन 1100 एडमिशन्स में लगभग बिहार का कोई भी ऐसा छोटा से छोटा कस्बा भी नहीं है जो अछूता रहा हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार के जो बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ, जो छोटे गाँव शहर से जो आते हैं, कई बार उनको ये लगता है कि हम मतलब बड़े शहर में जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, और पटना में कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा पहला ही ये जो वर्कशॉप जो होता है वो यही होता है कि हम बच्चे के झिझक को कैसे हटाएं। यानी कि अगर आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपको स्मार्ट बना के हम रखेंगे। आपको शुरू के 2-3-4 महीने में आपको खुद के अंदर तब्दीली होती हुई नजर आएगी, सो दैट कि आपको आगे चल करके अपनी पाठ्य

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में है। याद होगा आपको हर साल इसी महीने से ये कार्यक्रम आने वाले कुछ महीनों तक आप सुनते हैं और बातें हम करते हैं टेक्निकल पढ़ाई की। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, जो अगर आपने टेक्निकल पढ़ाई कर ली तो पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के बाद

0: को खूब अच्छे तरह से कर सकें। और आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो है, जब आप 3-4 महीने के बाद भी वापस घर जाएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बदलाव आप में महसूस करेंगे।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, आशीष आदर्श जी आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। युवाओं के लिए हम बातें कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और बीसीए और बीबीए पिछले 27 वर्षों से ये संस्थान अपने साथ लेकर चल रहा है, युवाओं में पठन पाठन करवा रहा है और रोजगार भी अच्छे खासे संख्या में लोगों को मिला है। अगर आप भी बीसीए और बीबीए की तरफ सोच रहे हैं तो एक बार बात करना चाहिए। और नंबर नोट करें 7520800800। आशीष जी एक बात बताइए, नहीं रुकिए, उससे पहले हम बताएं कि आर्किड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोर में है। हाँ आशीष जी एक बात बताइए, जब गांव से बच्चे निकलकर शहर में आते हैं, चकाचौंध देखते हैं, तो उन बच्चों या युवाओं कह लें, उनको संस्थान में क्या देखना चाहिए, कौन सा मानक है और क्या आर्किड बिजनेस कॉलेज उस सभी मानकों पर उतरता है?
0: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो आर्किड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीज़ें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीसीए किया या बीबीए किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात मैं करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियां 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही, बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
1: वाह बहुत खूब, आपने बेबाकी से सब कुछ कह दिया। हाँ आपने कह दिया कि स्टूडेंट आए तो जो पुराने स्टूडेंट रहे हैं संस्थान के उसको देखें, उनसे बात करें, उनका फोन नंबर लें और फिर संस्थान के बारे में जानकारियां लें। इसके अलावा एंड ऑफ द डे रोजगार बहुत मायने रखता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा रोजगार चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना। तो इसके विषय में भी आशीष जी ने बताया कि आर्किड बिजनेस कॉलेज की क्या स्थिति है, यही दूसरे कॉलेज में भी आपको देखनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बीसीए और बीबीए के लिए आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, 27 वर्षों से लगातार हाँ आप लोगों के लिए खड़ा है। और संकोच नहीं कीजिएगा, नंबर हम दे रहे हैं, एक बार फोन से बात कीजिए, वक्त निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा, अच्छे संस्थान का चुनाव कीजिए। और हम समझते हैं कि ये आर्किड बिजनेस कॉलेज जिसकी तरफ से ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अच्छा हो सकता है। नंबर नोट करें 7520800800, 7520800800। और अब आगे बढ़ते हैं, आशीष जी अगर हम टीचर्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
0: देखिए टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है, आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज देखिए, आप आर्किड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहां जाकर रिव्यूज देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्किड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
1: जरूर होगी विश्वसनीयता आर्किड बिजनेस कॉलेज की, क्योंकि आप लगातार लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्था है बीसीए और बीबीए के लिए। हम नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 75208080, 75208080। फोन करने में मत झिझकिचाइएगा, क्योंकि ये आपके

0: करियर का सवाल है। कहते हैं ना कि ये बुनियाद है आपकी, इसको मजबूत कीजिए और जीवन में फिर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए आशीष जी, 27 वर्षों का लंबा अनुभव है आर्किड बिजनेस कॉलेज के साथ बीसीए और बीबीएम के लिए, कैसे बच्चों को इंटरमीडिएट के जो साइंस हैं, कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं, कैसे बच्चों को ये बीसीए और बीबीए की पढ़ाई चुननी चाहिए, क्योंकि कोर्स का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी मैं कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
0: तो समझ में आ गई कि का करे के, हाँ कौना कौना स्टूडेंट कौना कौना सब्जेक्ट लेवे के या पढ़ाई करे के, हाँ सही चुनाव ही आपको करियर में आगे ले जाएगा। उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं 27 वर्षों से युवाओं के लिए टेक्निकल पढ़ाई का प्रबंध करने वाली संस्थान आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से आप बीसीए और बीबीए कर सकते हैं। नंबर है 7520800800, यानी 7520800800। आशीष जी कहते हैं ये आर्किड बिजनेस कॉलेज के अलावा भी आप टेक्निकल पढ़ाई का आपका हब है, खास करके कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या कहेंगे?
1: देखिए आर्किड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस है, एक आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्किड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़, और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहाँ चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं।
0: थैंक यू आशीष जी, ये बात को हम आगे बढ़ाएंगे अगले शनिवार को जब हम कार्यक्रम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा साथियों, चाहे बीसीए या बीबीए कीजिए, अब पैसे की भी चिंता नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ आर्किड बिजनेस कॉलेज में भी ये सुविधा है। बहरहाल हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, संस्थान का चुनाव ठीक से कीजिए। नंबर दे रहा हूँ आगे से, फोन करके पता कीजिए, नंबर है 7520800800, ये नंबर है आर्किड बिजनेस कॉलेज का। तो आज का उड़ान कार्यक्रम खत्म करने की राजेश को दीजिए इजाजत। थैंक यू आर्किड बिजनेस कॉलेज की, इस साल भी आपने ये सिलसिला जानकारियों का जारी रखा है। नमस्कार।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
5: उड़ान, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में गजल। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गाए इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत होता है यहीं पर संपन्न। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप

0: से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: dashlaw.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज

0: सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में चार नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है।

0: साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow.

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता,

0: उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं, अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस

0: आठ अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इतनों की और वो भी निर्धारित श्रृंखला वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
0: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
0: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
0: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और

0: किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
1: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडिल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई, उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
0: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
1: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
1: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
0: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
1: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
0: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे, और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है, और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड, अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में, जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की, इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे, और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप, जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे
0: हाँ, वो
3: 500
0: लोग
3: रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब। हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक।

0: कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव डेट।
1: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया।
2: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग, कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शैरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.

0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
1: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
2: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the...
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
2: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके
2: गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
3: दिस इज आकाश।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupaka.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी। कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: साथ में रत्ना पांडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।

0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference,